26। इस समय प्रातः की 5:56 और 10 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपका रेडियो मित्र अजय धाकड़। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: मीडियम एक 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार

संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ सुनिए समूह स्वर में ये मातृवंदना।

अभी आपने सुनी समूस्वर में ये मातृवंदना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता इस कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए शर्मा बंधुओं के स्वर में ये वचन।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए आप सुनिए भूपेंद्र सिंह के स्वर में ये भजन।

भूपिंदर सिंह के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता, इस कार्यक्रम के आखिर में लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भरोसा। इस विषय पर आज का ये चिंतन, चिंतक हैं तुलिका शर्मा।
1: हर सुबह एक छोटी बच्ची मंदिर जाकर भगवान के सामने आंख बंद कर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और थोड़ी देर कुछ बुदबुदाती रहती, फिर आंखें खोलकर झुकती, मुस्कुराती और दौड़कर वापस चली जाती। ऐसा रोज होता। मंदिर का पुजारी उसे रोज देखता और उसे जिज्ञासा होती कि वो ऐसा क्यों करती है। तो छोटी बच्ची है, धर्म का उसे कहाँ ज्ञान होगा। पता नहीं कोई प्रार्थना भी उसे आती है कि नहीं। रोज पुजारी उस बच्ची को देखता। कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन बच्ची दौड़कर लौटते हुए पुजारी से टकरा गई। उसने सोचा कि आज मैं पूछ ही लेता हूँ इस बच्ची से कि ये ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है, वो भी हर रोज़। पुजारी ने उस बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कितने दिनों से

0: देख रहा हूँ तुम यहाँ रोज आती हो, क्या करती हो? बच्ची तपाक से बोली, मैं प्रार्थना करती हूँ। पुजारी के मन में थोड़ी शंका हुई। उसने फिर पूछा, तुम्हें कोई प्रार्थना आती है? बच्ची बोली, नहीं। उसने बच्ची से फिर पूछा, तो फिर आंख बंद करके क्या बोलती रहती हो? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया कि मुझे कोई प्रार्थना तो आती ही नहीं है, लेकिन मुझे अ आ ई ई और क ख ग घ पूरे आते हैं। मैं इन्हीं को 5 बार दोहराकर भगवान से कहती हूँ कि मुझे प्रार्थना तो आती नहीं, लेकिन कोई भी प्रार्थना इन 12 खड़ी और वर्णमाला से बाहर तो होगी नहीं। तो आप इन अक्षरों को अपनी इच्छा के अनुसार जमा लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वो बच्ची तो चली गई, लेकिन पुजारी अवाक रह गया और उस बच्ची को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। ये कहानी थी भरोसे की। बच्ची ने अपने सीमित ज्ञान को जा करके ईश्वर के सामने उड़ेल दिया और कहा, चुन लीजिए, इसी में है मेरी सारी श्रद्धा। ये श्रद्धा, ये भरोसा उम्र में बड़े होने के बाद भी उस पुजारी के पास नहीं था। बच्ची के अंदर इतना आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी गहरी आस्था सिर्फ उस भरोसे के कारण ही थी। यदि हम जीवन में किसी के ऊपर इस हद तक भरोसा कर पाए तो हम भी इतने ही निश्चिंत और इतने ही पुरसकून हो सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई भरोसे का व्यक्ति है जिस पर हम अपनी पूरी चिंताओं का बोझ उड़ेल कर निश्चिंत और निष्फिक्र हो सकते हैं? यदि नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू कीजिए, भरोसा हासिल करना शुरू कीजिए। जिस दिन आपको इस तरह का भरोसा प्राप्त हो जाएगा, जीवन के प्रति न सिर्फ आपका नज़रिया बदलेगा बल्कि आपके परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा। आपने टेलीविज़न पर आने वाले बहुत तरह के डांस शोज देखे होंगे, एक्रोबैटिक्स करते हुए आपने उन्हें देखा होगा, उछलते हैं वापस दूसरे की गोद में आ जाते हैं, या फिर बैले डांसिंग देखी होगी, जिमनास्टिक देखा होगा जिसमें दो लोग एक साथ नृत्य करते हैं। दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन जितना गहरा होता है उतना ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस होता है। एक व्यक्ति हवा में उछलता है, उसे पूरा यकीन होता है कि नीचे खड़ा व्यक्ति उसको ज़मीन पर गिरने से पहले संभाल लेगा और इस तरह से संभालेगा कि ज़रा भी चोट नहीं आए। यदि ऊपर उछले व्यक्ति को ये भरोसा ना हो तो क्या वो उतनी स्मूदली उसकी बाहों में गिर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी हड़बड़ाहट की वजह से नीचे उसे पकड़ने वाला व्यक्ति भी हड़बड़ा जाएगा और दोनों के परफॉर्मेंस में वो हड़बड़ाहट दिखेगी और संपूर्ण रूप से उन दोनों के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह जो भरोसा है वो भी काम करता है। यदि हम कोई काम करते हैं और हमें ये यकीन होता है कि यदि हम इस काम में असफल रहे तो कोई है हमारे साथ जो हमारी गलतियों को संभाल लेगा, तो हम उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं। ये आपसी समझ भी विकसित करता है। ये समझ इस तरह की होती है कि हमारी किसी छोटी सी गलती की वजह से भी सामने वाले का किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे अपने साथियों के लिए, तो न सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस में सुधार आएगा बल्कि हमारा टीम वर्क भी बेहतर होगा। जिंदगी का फंडा यही है कि हमें किसी पर ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा होना चाहिए जो बिना शर्त हो और जिस पर सवाल ही न उठाया जाए। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में वो किसके साथ होगा। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई है तो आप खुशकिस्मत हैं, और यदि ऐसा कोई नहीं है तो तलाश जारी रखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भरोसेमंद साथी की तलाश है।
1: भरोसा, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का ये चिंतन। चिंतक थी तुलिका शर्मा। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम में है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत, चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देव नदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पीपीएस चौहान।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज के मैं आपसे पशुपालन से संबंधित कुछ समसामयिक जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मई का महीना ये चल रहा है। मई के महीने में अपने को क्या क्या पशुपालन में प्रबंधन, एक तो ये करना चाहिए कि जो पशुशाला या जो बाड़े हैं, आजकल गर्म हवाएं या लू चलने लगी हैं, उनको क्या है कि खिड़की दरवाजे वगैरह जितने भी, उनको टाट की बोरियों से अपन कवर करके रखें, जिससे कि लू से होने वाले हानिकारक प्रभाव से उनको बचाया जा सके। दूसरा क्या होता है कि गर्मियों में पशु पर गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा तनाव रहता है, और वह तनाव और दुगना हो जाता है जब उसको हरा चारा गर्मी के समय में नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या है कि वैसे तो किसान भाई कुछ करते ही हैं, जायद के समय में उन्होंने कुछ ने एमपी चरी लगाई है, और मुरैना ज़िले में हमने कुछ किसानों को प्रयोग भी करवाया कि एमपी चरी और काउपी मिला के अपना हरा चारा उत्पादन कर उसको खिलाएं। तो हरे चारे की लगभग 10 से 15 किलोग्राम हरे चारे की समुचित व्यवस्था पशुओं के लिए करें, ताकि उनका तनाव काफ़ी कुछ हद तक कम किया जा सके और दूध उत्पादन में जो गिरावट है वो कम की जा सके। इसके अलावा क्या है कि पशुओं में हमने देखा है कि आजकल ज़्यादातर जानवरों में प्रजनन संबंधी समस्याएं, और विशेषकर गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपने को पशुओं के आहार में विटामिन्स और खनिज लवण की मिश्रण की कमी की पूर्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, बाज़ार में विटामिन और खनिज लवण मिश्रण के पैकेट वेटनरी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं, वहाँ से अपन कोई भी पैकेट ले लें जो अपने बजट में आए, और उस पैकेट से 40 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से मिनरल मिक्सचर पशु के आहार में मिलाएं, जिससे कि वह आसानी से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी कर सके। अब 40 ग्राम किसान भाई कैसे नापेंगे, अगर नाप सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी नाप सकते हैं तो एक माचिस की डिब्बी भर के पशु के दाने में अगर अपन ने मिला दिया तो वह 40 ग्राम के आसपास हो जाता है। दूसरा क्या है कि पशुओं में आप लोग जानते हैं कि बरसात से पहले टीकाकरण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है, तो वो टीकाकरण के प्रति भी अपन सजग हो जाएं और टीकाकरण पशुओं में करवाने की व्यवस्था करें। देखिए, खुरपका मुंहपका रोग पहले बरसात के पहले टीकाकरण करवाया जाता, लेकिन आज के समय में इसके होने में परिवर्तन आ गया है, और आजकल यह रोग अपना सर्दियों में ज़्यादा होने लगा। लेकिन फिर भी जिनने ना कराया हो तो इसका टीकाकरण 6-6 महीने के अंतराल पर, अगर वो 6 महीने अभी पूरे हों तो करवा लें। इसके अलावा गलगोंटू या हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया या बीमारी जो पशुओं में होती है, उसके लिए भी टीकाकरण अपन अभी करवा लें। इसके अलावा एंटेरोटॉक्सीमिया, ब्लैक क्वार्टर आदि अन्य बीमारियां भी जो पशुओं में होती हैं, उनका टीकाकरण भी अपन अभी करवा सकते हैं। दूसरा क्या है कि दाने का प्रबंधन में अगर अपन देखें तो पशुओं को दाने के लिए शरीर के अनुसार दाना दें, जैसे शरीर मेंटेनेंस के लिए सामान्यतः पशुओं को 2 किलोग्राम दाना, 1.5 से 2 किलोग्राम, और दूध उत्पादन के लिए भैंसों में प्रति 2 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना, और देसी गाय में प्रति 3-3.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना अतिरिक्त दें। इसके अलावा गर्भावस्था में अगर जो पशु हैं उनको गर्भावस्था के 8वें महीने से गाय भैंस दोनों में प्रतिदिन 1.25 किलो से लेके 1 किलो दाना अतिरिक्त सप्लीमेंट करें दाने में, जिससे कि उनको जो बच्चे का विकास है वो ठीक से हो सके। इसके अलावा पशुओं में कीड़े मारने की दवाई या डिवर्मिंग की प्रक्रिया भी निश्चित रूप से करें, क्योंकि हमारे पशुओं के पेट में कीड़े पटेरा वगैरह रहते हैं। गर्मियों में तो खैर जुएं किलनी वगैरह भी चमड़ी पे हो जाते हैं पशुओं में, अतः उसको लिए भी बाह्य परजीवी नाशी जो रसायन आते हैं, जो दवाइयाँ आती हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, और अपना जो पेट में अंदर कीड़े हैं उनको मारने के लिए कई दवाइयां बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन दवाइयों को लेके पशु के वजन के अनुसार उसको खिलाएं, और टीकाकरण जरूर डिवर्मिंग की प्रक्रिया जरूर कराएं, क्योंकि डिवर्मिंग की प्रक्रिया साल में 6-6 महीने के अंतराल पर बड़े पशुओं में 2 बार जरूर करानी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय था गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पीबीएस चौहान। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 और 10 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
2: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
1: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
2: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
1: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
2: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
1: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
2: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: पानी रे पानी,
1: आओ मिलकर करें प्रयास,
2: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: रक्तदान जीवन का उपहार है। आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्म संतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
1: याद रखो हमारी बात,
2: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
1: जंगल है धरती का गहना,
2: सदा इसकी रक्षा करना,
1: होगी जो धरती पर हरियाली,
2: चहुं ओर फैलेगी
1: खुशहाली।
3: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इसके ठीक बाद सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हिंदी में समाचार भी हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
4: वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य 5-दिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणां उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकान्

0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-अधिक-ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् 70-अधिक-ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी

जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी का
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 और 10 सेकंड हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले पहली सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में

अब से कुछ ही देर बाद 7:20 पर आप सुनेंगे काफी पाठ। कवि हैं राज हंस सेर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:30 पर। और 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी टूनपे की गाई हुई कुछ भजन।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर का समय रहेगा 9:00 बजे और शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे निसार हुसैन का तबला वादन। ताल होंगे जगपताल और 3 ताल। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 10:00 बजे, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:00 बजे। दोपहर में पुनः फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:00 बजे और चित्रपट संगीत का समय रहेगा 2।

0: पर 2:30 पर। दोपहर में पुनः फिल्म से माफ कीजिएगा, दोपहर में पुनः शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा दोपहर 12:30 पर। लोक संगीत आप सुनेंगे 2:01 पर और सुगम संगीत का समय रहेगा 2:45 पर। स्वास्थ्य दर्पण आप सुनेंगे 2:01। शास्त्रीय संगीत, स्वास्थ्य दर्पण, लोक संगीत और सुगम संगीत, ये सभी कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम का समय रहेगा 2:03। श्रोता साथियों, यह सभी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। युवा श्रोता का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 5:02 पर। यह कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति है। सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का समय रहेगा 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर और 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा 9:30 पर। रागरजनी का समय रहेगा 10:30 पर। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 6:00। श्रोता साथियों, यह सभी कार्यक्रम हमने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का समय रहेगा 8:00, जिसे हम अपने मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ग्रामीण श्रोता अगली कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा 7:20 पर। चर्चा के विषय होंगे विश्व दुग्ध दिवस और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लोक माधुरी में बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। तो श्रोता श्रोती, हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब, विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देशभर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
2: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
1: इंदौर में रविवार की शाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी रामराज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
3: पुलिस कमिश्नर के माध्यम से 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं।
1: वहीं इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉ. यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें देश भर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। ये कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
5: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गांव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बलदेव वाघमारे बताते हैं,
6: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम

0: से कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
2: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 1,44,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निवाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाहजहांपुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। रायसेन जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच आरसीटी संस्थान के द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगरपालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर उपवन में कल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम में 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है काव्य पाठ। कवि हैं राजहंस सेठ।
1: मेरी पहली कविता है प्रेम में। मैंने प्रेम में उसे चांद कहा, उसके चेहरे पर चांदनी बिखर गई। मैंने प्रेम में उसे हिरणी कहा, उसमें उमंगें कुलाचे भरने लगी। मैंने प्रेम में उसे चांद कहा, उसके चेहरे पर चांदनी बिखर गई। मैंने प्रेम में उसे हिरणी कहा, उसमें उमंगें कुलाचे भरने लगी। मैंने प्रेम में उसे हर श्रृंगार कहा, वह झरती रही भीतर ही भीतर। मैंने प्रेम में उसे हर श्रृंगार कहा, वह झरती रही भीतर ही भीतर। मैंने उसे नदिया की धार कहा, एक पूरी सदी उसमें नदी की तरह बहने लगी। मैंने उसे नदिया की धार कहा, एक पूरी सदी उसमें नदी की तरह बहने लगी। मैंने प्रेम में उसे आकाश कहा और महसूस किया उसका नीलापन अपने विस्तार में। मैंने प्रेम में उसे आकाश कहा और महसूस किया उसका नीलापन अपने विस्तार में। मैं बहुत कुछ कहता रहा उससे प्रेमालाप में। मैं बहुत कुछ कहता रहा उससे प्रेमालाप में।

बांधता रहा जमीन आसमान के कुलाबे, वह बस एक टक निहारती रही मुझे, वह बस एक टक निहारती रही मुझे। फिर उठी यक व यक, लिया मुझे आलिंगन में, देते हुए चुम्बन बोली मुस्कुरा कर, लो अब पूरा ब्रह्मांड हो गया तुम्हारा। फिर उठी यक व यक, लिया मुझे आलिंगन में, देते हुए चुम्बन बोली मुस्कुरा कर, लो पूरा ब्रह्मांड हो गया तुम्हारा। दूसरी कविता, छोटी सी कविता है गुनाह। हमने उन गुनाहों की क्षमा मांगी जो हमने किए नहीं थे, हमने उन गुनाहों की क्षमा मांगी जो हमने किए नहीं थे, जो किए थे उन्हें छुपा गए, जानते थे कि वे क्षमा योग्य नहीं है, जो किए थे उन्हें छुपा गए, जानते थे कि वे क्षमा योग्य नहीं है। हम गुनाहों की माफ़ी के लिए ईश्वर के पास गए, राजा के सामने झुके, हुक्मरानों से गुहार की। हम गुनाहों की माफ़ी के लिए ईश्वर के पास गए, राजा के सामने झुके, हुक्मरानों से गुराह की। हम कभी उनके पास नहीं गए जिनके गुनाहगार हम थे। तीसरी कविता है कहाँ रह जाएगी पृथ्वी। लड़की के शरीर में जल है प्रभु इसे ज्वार दो, लड़की के शरीर में जल है प्रभु इसे ज्वार दो, आंसू बनकर ही न रहे कभी बहे भी तटबंधों को तोड़कर, लड़की के शरीर में अग्नि है प्रभु इसे ताप दो, जलती रहे न रहे वह स्वयं ही कभी जलाए अपने दुख भी। लड़की के शरीर में अग्नि है प्रभु इसे ताप दो, जलती न रहे वह स्वयं ही कभी जलाए अपने दुख भी। लड़की के शरीर में वायु है प्रभु इसे बेग दो, लड़की के शरीर में वायु है प्रभु इसे बेग दो, उड़ सके वह स्वच्छंद भीतर के पंखों को फैलाकर। लड़की के शरीर में भूमि है प्रभु इसे आधार दो, लड़की के शरीर में भूमि है प्रभु इसे आधार दो, वह सह सके सारे सुख दुख और गड़ न जाए जमीन में बात बात पर। लड़की के शरीर में आकाश है प्रभु इसे विस्तार दो, उसका आसमान न रहे सीमित घर की खिड़की तक, उसमें एक छाएं हो अनंत कल्पनाएं हों और कल्पना न हो विलीन अंतरिक्ष में। लड़की के शरीर में समाकर पंच तत्व भी खो रहे हैं अपनी मूल प्रवृत्ति और हो रहे हैं नष्ट, लड़की के शरीर में समाकर पंच तत्व भी खो रहे हैं अपनी मूल प्रवृत्ति और हो रहे हैं नष्ट। प्रभु बचाना अपने इन पंच तत्वों को, वरना कहाँ रह जाएगी पृथ्वी और कहाँ आप। अगली कविता है पिता का कमरा। पिता का कमरा अब भी वैसा ही है जैसा था पिता के समय, पिता का कमरा अब भी वैसा ही है जैसा था पिता के समय। अब भी चरमराती है टूटी कुर्सी बिस्तर की गंधाती चादर पर, अब भी पड़ती हैं वैसी ही सलवटें जैसी पड़ती थी पिता के समय। पिता का कमरा खांसता खकारता है वैसे ही जैसे खांसते थे पिता, उसमें रोशनी इतनी अंधेरी कि मुश्किल से ही देख पाते होंगे वह अपने चेहरे की झुर्रियाँ जिन्हें वह छोड़ कर गए अपने आईने के पास। उसमें रोशनी इतनी अंधेरी कि मुश्किल से ही देख पाते होंगे वह अपने चेहरे की झुर्रियाँ जिन्हें वह छोड़ कर गए अपने आईने के पास। हाँ अब भी वैसा ही है पिता का कमरा, हाँ अब भी वैसा ही है पिता का कमरा जैसा था उनके समय। तब तो मैंने उसे नहीं देखा, अब देख रहा हूँ जब बेटे द्वारा फेंक दिया गया हूँ पिता के कमरे में, अब देख रहा हूँ जब बेटे द्वारा फेंक दिया गया हूँ पिता के कमरे में। पिता का कमरा खुश है, वह कब से कर रहा था मेरा इंतजार। अगली कविता है औरतें। सात समुंदर से दुख लेकर आई औरतें और बत्तख के सफ़ेद पंख बराबर हल्का सुख। सात समुंदर से दुख लेकर आई औरतें और बत्तख के सफ़ेद पंख बराबर हल्का सुख। वे आईं उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, नदियों की तरह करती हुई धरती का जलाभिषेक। वे आईं उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, नदियों की तरह करती हुई धरती का जलाभिषेक। उन्होंने उठाए अपने सीने पर पहाड़, सिर पर काली जलराशि, नितंबों पर पठार, जंघाओं पर शीशम के तने, आँखों में आकाश,
उन्होंने फैलाई अपनी बाहें, अपनी देह में भर ली उन्होंने समूची पृथ्वी और कोख में सारी वनस्पतियाँ। उन्होंने फैलाई अपनी बाहें, अपनी देह में भर ली उन्होंने समूची पृथ्वी और कोख में सारी वनस्पतियाँ। उन्होंने जने बच्चे, गड़े घर, रचे उत्सव, रंगों से सजाई पृथ्वी, धरती की सतह पर बिछाई हरी चादर, और दूर बैठकर देखती रही उन्हें अपने बाल सुखाती। धरती की सतह पर बिछाई हरी चादर और दूर बैठकर देखती रही उन्हें अपने बाल सुखाती। उन्होंने उठाई कुदाल, तोड़े पत्थर, तोड़ी रूढ़ियाँ, तोड़े अपने हाड़, सहते हुए टूटने की पीड़ा वे हंसी तो चांदनी बिखरी। उन्होंने उठाई कुदाल, तोड़े पत्थर, तोड़ी रूढ़ियाँ, तोड़े अपने हाड़, सहते हुए टूटने की पीड़ा वे हंसी तो चांदनी बिखरी। काली रात में तारे तोड़कर उन्होंने दी हमें सुबह सौगातें, काली रात में तारे तोड़कर उन्होंने दी हमें सुबह सौगातें, सात समुद्रों का दुख तो लेकर आई औरतें, सात समुद्रों का दुख तो लेकर आई औरतें, पर बत्तख के सफ़ेद पंखों जैसा हल्का सुख भी जो डूबता नहीं कभी दुख के सागर में, जो डूबता नहीं कभी दुख के सागर में। अगली कविता है बूढ़ी किताबें। किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, उनमें भी पड़ती हैं झुर्रियाँ, चरमराती है उनकी भी देह, उनके भी भाष्य निरर्थक और अस्पष्ट होते जाते हैं हमारे बोलों की तरह। किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, उनमें भी पड़ती हैं झुर्रियाँ, चरमराती हैं उनकी भी देह, उनके भी भाष्य निरर्थक और अस्पष्ट होते जाते हैं हमारे बोलों की तरह। ऐसे में उन्हें संभालते भर हैं हम, पढ़ते नहीं जैसे संभाला जाता है हमें हमारे अंतिम दिनों में। फड़फड़ाते हैं उनके भी पन्ने जैसे हमारी बाहें लेने के लिए अपनी पोती को अपने आगोश में। फड़फड़ाते हैं उनके भी पन्ने जैसे हमारी बाहें लेने के लिए अपनी पोती को अपने आगोश में। समय के साथ जिल्दें टूटने लगती हैं उनकी, पीले पड़ते जाते पृष्ठ। समय के साथ जिल्दें टूटने लगती हैं उनकी, पीले पड़ते जाते पृष्ठ। खोती जाती है उनकी मनसलता, बदल जाती हैं लिपियाँ, छूट जाते हैं उनके अर्थ हमसे, पकड़ में नहीं आता और छोर। फिर उन्हें यादों में रखना पड़ता है जैसे हम रहते हैं अपनों की यादों में कुछ समय। फिर उन्हें यादों में रखना पड़ता है जैसे हम रहते हैं अपनों की यादों में कुछ समय। कुछ समय हाँ, वे हमसे कुछ ज़्यादा समय रह सकती हैं हमारी स्मृति में। किताबें किताबें हैं, किताबें किताबें हैं, मरती हैं हमारी तरह वे भी कभी न कभी। किताबें किताबें हैं, मरती हैं हमारी तरह वे भी कभी न कभी। बेकाल जयी नहीं होती और ना चिर स्मृत।

अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ, कवि थे राजहंस सेठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

शुभ साथियों, आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरगिस दत्त की फिल्मों के कुछ गीत। शुभ साथियों, आज एक जून को नरगिस दत्त जी का जन्मदिवस है। नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की हिंदी जगत की सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनका असली नाम फातिमा राशिद था। एक जून 1929 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ।

छोटे साथियों कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म बरसात का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना है फिल्म मदर इंडिया का ये गीत। गीत शकील बदायूनी का था और संगीत दिया था नौशाद ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे।

श्रोता साथियों, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का कल रविवार को निधन हो गया है। हिंदी सिनेमा जगत में उन्होंने कई फिल्मों में गीत गाए। उनके आकस्मिक निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं।

0: याद रखो हमारी बात।
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना।
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहू और फैलेगी खुशहाली।
2: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोता कार्यक्रम में आगे लीजिए, आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म आधी रात के बाद का ये गीत। गीत प्रेम धवन का है और संगीत दिया है चित्रा गुप्ता ने।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोता साथियों, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुना रहे हैं सुमन कल्याणपुर की फिल्मों के कुछ गीत। श्रोता साथियों, सुमन कल्याणपुर भारतीय संगीत जगत की एक बेहद प्रतिष्ठित और सदाबहार पार्श्व गायिका थी। 1960 और 1970 के दशक में अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ का जादू बिखेरने वाली सुमन जी ने हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती सहित कई भाषाओं में करीब 3000 से अधिक गाने गाए। उन्होंने अपने करियर में कई सदाबहार और सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज़ भी दी। उन्होंने वर्ष 1954 में फिल्म मंगू से अपने पार्श्व गायन करियर की शुरुआत भी की थी।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोता इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात। कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में

0: तीन तीन सीटें, झारखंड में दो सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: खरीद कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi

0: को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी।

0: सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोता साथियों, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्वी टोनपे का के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इनके स्वर में यह भजन।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। श्रोता साथियों, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्वी टोनपे के गायक कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम में आगे सुनिए इनके स्वर में ये गीत।

0: याद रखो हमारी बात।
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना।
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुओं ओर फैलेगी
0: खुशहाली।

आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। श्रोता साथी, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना पूर्वी टोनपे के स्वर में ये भजन। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में ये गीत।

मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को सम्मानित भी किया। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया। सबसे ज्यादा तापमान शाहजहांपुर में 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और साथियों को आपके मित्र अजय का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज भारत के छठवें राष्ट्रपति और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे श्री नीलम संजीव रेड्डी जी की पुण्यतिथि है। श्रोता, 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के जलरु गांव में इनका जन्म हुआ। वर्ष 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1938 में आंध्र प्रांतीय कांग्रेस के समिति के सचिव भी रहे और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई वर्षों तक जेल में भी रहे। वर्ष 1956 में जब नया आंध्र प्रदेश राज्य बना तो वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने। वर्ष 1967 से 1969 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री इस्पात और खान, परिवहन, विमानन, नौवहन और पर्यटन के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1977 में वे भारत के छठे राष्ट्रपति बने। श्रोता साथियों, यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी क्योंकि वह देश के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। एक सच्चे

अजनिता के रूप में उन्होंने वर्ष 1964 में मुख्यमंत्री पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। उनके उत्कृष्ट सार्वजनिक जीवन, कवि हृदय और एक कुशल प्रशासक के रूप में उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र अजय। श्रोता, विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। यह दिवस वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा 1 जून 2017 को नई दिल्ली में दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया था।

यह दिवस दूध पर ध्यान केंद्रित करने और स्वस्थ आहार, जिम्मेदार खाद्य उत्पादन और आजीविका समुदायों के समर्थन में डेयरी उत्पादों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। श्रोताओ, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, B12, डी और फास्फोरस जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। श्रोता साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस तो मनाया जाता है, वहीं भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथियों, भारत वैश्विक स्तर पर कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 18-19% अपना योगदान देता है। हमारे देश में दूध के उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब। साथियों, वर्ष 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति की बदौलत भारत न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि विश्व डेयरी के मानचित्र पर भी शीर्ष पर पहुंच गया।

श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं।

0: रही आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: श्रोता, हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। जी दोस्तों, यह दिन दुनिया भर के माता पिता और अभिभावकों को बच्चों के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण, त्याग और आजीवन बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। श्रोता, यह दिन बच्चों के पालन पोषण, उनके सामाजिक और मानसिक विकास में अभिभावकों की अहम भूमिका को मान्यता देता है। माता पिता को बच्चे का पहला शिक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। श्रोता, भारत और कई अन्य देशों में राष्ट्रीय अभिभावक दिवस भी आमतौर पर जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाता है। साथियों, एक अभिभावक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ बच्चों की इमोशनल हेल्थ को भी बनाए रखने की और उन्हें प्रोत्साहित करने की। दोस्तों, अगर बच्चे भावनात्मक तौर पर मजबूत होंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अक्सर हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि परीक्षा में कम अंक आने या असफल होने से बच्चे के डर से बच्चे घातक कदम उठा लेते हैं, और यह उदाहरण है कि वे इमोशनल तौर पर कितने कमज़ोर हैं। ऐसे में एक अभिभावक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की इमोशनल हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, इसका उनके विकास पर असर पड़ता है। बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी जिम्मेदारियां उन्हें दें, इससे वे जिम्मेदार बनेंगे। अगर बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। दिन भर में फैमिली टाइम निश्चित करें जिसमें बच्चों से बातें करें, उनकी बातें सुनें, जिससे वे खुद को इग्नोर फील ना करें। साथ ही बच्चों में नई हॉबी भी डेवलप करें और जिससे उनमें सामाजिक जुड़ाव विकसित करें।

श्रोता, मध्य प्रदेश में योग को जन आंदोलन बनाने की तैयारी। 21 जून तक चलेगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे 2026 से पहले मध्य प्रदेश में योग को जन आंदोलन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आयुष विभाग ने पिछले दिनों घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान की शुरुआत भी की है। श्रोता साथियों, यह अभियान 21 जून तक चलेगा। इसके तहत प्रदेश के 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पदस्थ योग शिक्षक छोटे छोटे समूहों को योगाभ्यास कराएंगे। और श्रोताओं, खास बात यह है कि लोग घर बैठे लाइव योग प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्रदेश भर के करीब 15,000 लोग रोज ऑनलाइन योगाभ्यास से जुड़ेंगे। श्रोता, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का एक माध्यम है। योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में योग कर महाभियान की शुरुआत भी की गई। प्रदेश सरकार ने घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान को गांव गांव तक पहुंचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब स्कूलों और कॉलेजों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया जा रहा है।

श्रोताओ, इस माह वीरंगना मेला योग करें और संगीत सुने। लेकिन दोस्तों, इस यह महीना इस बार कुछ खास रहने वाला है। आज 1 तारीख को समर एक्टिविटी होगी सेंट्रल लाइब्रेरी, और खासियत है बच्चों के लिए बाड़ा स्थित शासकीय सेंट्रल लाइब्रेरी में रोज एक्सपर्ट विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण देंगे। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस पर जीवाजी यूनिवर्सिटी में सुबह 8 बजे क्लब लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जाएगी और यह रैली शहर भर में निकाली जाएगी। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यूथ हॉस्टल सुबह रैली निकाली जाएगी और दिन में युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा।

14 तारीख को रविवार के दिन रक्तदाता सम्मान होगा। लॉयंस जेसीआई और रोटरी क्लब की ओर से रक्तदाता दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन होगा और 17 जून को दो दिनी वीरांगना मेला। पहले दिन हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी और दूसरे दिन नाटक का मंचन और वीरांगना अलंकरण दिया जाएगा। और 21 तारीख को विश्व योग दिवस पर ग्वालियर किले पर सुबह 6 बजे विश्व योग दिवस पर किले के मानसिंह पैलेस के पास सहित अन्य स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम भी होंगे। 22 तारीख को संगीत दिवस प्रोग्राम होगा। म्यूजिक क्लब की ओर से संगीत कार्यक्रम होंगे और इसमें स्थानीय और बाहर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

श्रोता साथियों, अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, पर्यावरण का और वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वृक्ष न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत ही आवश्यक है। वृक्षों का क्या महत्व है, इसे कुछ इस तरह समझिए। एक पेड़ लगाकर हम 1 टन CO2 कम कर सकते हैं। यह दोस्तों सिर्फ एक बड़ा पेड़ रोज 21 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। 100 साल में यह कम से कम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। इस तरह पेड़ हमारे पर्यावरण को स्वच्छ तो बनाता ही है, ऑक्सीजन के रूप में हर साल 10 लोगों को प्राणवायु भी देता है। अगर हर व्यक्ति हर साल कम से कम एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को समृद्ध बना सकता है। श्रोता साथियों, 15% तक अधिक होती है उन घरों की कीमत जिनके आंगन में या आसपास पेड़ होते हैं। इसलिए दोस्तों, वृक्षों की कीमत को समझें, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं, जिससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ प्राणवायु मिल सके। वृक्षारोपण के लिए खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। श्रोता साथियों, अब समय चला इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, तो इस कार्यक्रम से अब अपने मित्र अजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निसार हुसैन का तबला वादन। तो आइए सुनते हैं निसार हुसैन का तबला वादन, ताल है जगबताल।

अभी आपने सुना निसार हुसैन का तबला वादन, ताल था जगपताल। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको सुनवा रहे हैं निसार हुसैन का तबला वादन। कार्यक्रम में आगे सुनिए। निसार हुसैन का तबला वादन ताग है, ताल है, तीन ताल।

0: निसार हुसैन का अभी आपने सुना तबला वादन ताल था तीन ताल। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 10 बजने को हैं। अब जिले की चिट्ठी हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: और बदलते समय की तस्वीर आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कड़ियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खासतौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 3 विषयों क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17,41,00,000 रुपये की लागत से श्री परशुराम श्रीकृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47,00,000 रुपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता

आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2,20,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर, शबीर कुमार और साथियों की आवाजों में फिल्म पाप की दुनिया का यह गीत। गीत लिखा है अनजान ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है बापी लहरी ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा है जगदीप धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। और साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, नीतू पाल, दिव्यांश बघेल और पाल परिवार के सभी सदस्यों ने। तो आइए सुनते हैं सभी फरमाइश पर फिल्म पाप की दुनिया का ये गीत।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

आयशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म डकैत का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने। ग्राम कलगुपुरा तहसील जौरा जिला मुरैना से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था विश्राम कायम सिंह, विजय सिंह, पान सिंह, भरत लाल, पुष्पेंद्र धाकड़, धर्मेंद्र और कदम सिंह ने। और इसी गीत को सुनी फरमाइश की थी ग्राम रजोदा तहसील जोरा जिला मुरैना से ही शैलेंद्र कुशवाहा, सोनू राजपूत, नितिन शर्मा और संजय शर्मा ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ग्राम संदलपुर आंतरी से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव ने। और साथ ही इस गीत को सुनी फरमाइश की थी सौदागर संतरपुरा से गुड्डू मिश्रा, ग्रीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी चौरसिया कॉलोनी ग्वालियर से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया, लखन चौरसिया और रेखा चौरसिया ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला ना रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन ना धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म घातक का ये गीत। गीत लिखा था मजरू ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था विनोद मुनत, चेतन नहाता, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुछ मुनत ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म में गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: ए भाई।
1: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: ए भाई।

रूप कुमार राठौर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर का ये गीत। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा ने। और साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह इस्लामाबादी, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म संगीत का यह गीत। गीत लिखा था संतोष आनंद ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। यमुनानगर दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर जिला ग्वालियर से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था अनीता जैन, शिवानी जैन, नीलम जैन, सुभाष जैन, चित्रलेखा और ममता ने, और साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी सारिकानगर दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर जिला ग्वालियर से ही त्रिलोक शर्मा, संदीप राजपूत, बबलू तोमर, प्रदीप शर्मा, चित्रांश नरेंद्र कुशवाहा और पंकज ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

रक्तदान जीवन का उपहार है। आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

0: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म है दूध का कर्ज का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत दिया था अनु मलिक ने। डोंडी लोहारा बादौल छत्तीसगढ़ के इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया ने। और इसी गीत को सुननी फरमाइश की थी ग्राम करेली ज़िला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शकीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, अमीर अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। श्रोत साथियों, कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाश अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉरलस आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि हमारे परिश्रमी पशुपालक भाई बहनों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान और पशुपालक बंधुओं के पुरुषार्थ से राज्य शीघ्र ही मिल्क कैपिटल बनेगा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में ये उछाल देखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के

0: स्थान हासिल किया है। टीम का मुकाबला बुधवार को सेमीफाइनल मैच के ग्रुप ए की उप विजेता भूटान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।
2: फोन करें, गीत सुनें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आपकी फरमाइश जुड़ी है टेलीफोन नंबर से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हम इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का, जितना इंतज़ार आप करते हैं अपनी फरमाइश का।
3: हेलो,
2: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
3: हाँ, फोन करें, गीत सुने।
2: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं खैरो कला से रमेश चंद्र नायक बोल रहा हूँ, जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से।
2: जी नायक जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है जी।
2: क्या चल रहा है?
3: और ठीक ठाक है। अभी तो अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो अभी जो है खेती पाती सब हो गई है और जो है ब्याह शादी भी अभी रुकी हुई है, जून में है। हाँ, तो अभी तो फुर्सत के दिन चल रहे।
2: तो ये जो फुर्सत के दिन होते हैं, ये सिर्फ आराम करके गुजारते हैं या इसमें कोई काम करने की भी कोशिश करते हैं?
3: मैडम जी, इतनी गर्मी पड़ी है साल रिकॉर्ड तोड़। पहले तो ना ईंट गुम्मा कहीं कुछ कर लेते गर्मियों में लोग, किसान लोग। इस साल जो है बहुत गर्मी पड़ी तो आदमी निकल नहीं पाए घर से।
2: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे घरों में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जो किए जा सकते हैं? बच्चों के साथ समय गुजारा जा सकता है, घर में क्या चीज चल रही है, क्या है, काम में तो बहुत बार ध्यान नहीं दे पाते हैं।
3: एक हमारी सुनिएगा, ये घर का काम जैसे औरतें देखा करती, कहीं जो है पापड़ बनाना, कहीं मूंग की बड़ी बनाना, ये सब चलता रहता। अब लोग बागों का काम थोड़ी है, ये देहात में पड़ गए जो है। अब शहर में तो लोग बाग कुछ ना कुछ करते ही रहते।
2: काम कभी ऐसा थोड़ी कहता है कि हम देहात में हैं तो हमें आप नहीं कर सकते हो।
3: नहीं, और कोई काम नहीं रहता ना।
2: बात आपकी बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारा थोड़ा सा आग्रह कह लीजिए या सोच ये है कि घर के बाहर के काम और पैसे कमाने के काम ही नहीं होते हैं सिर्फ, घर के भीतर के भी काम होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर की महिलाओं के साथ रसोई घर में ही काम करें या हाथ बटाएं, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है यदि ऐसा करते हैं तो, लेकिन बच्चों के साथ समय गुजार सकते हैं।
3: पहले आप बताएं जो है, दीदी जी आप बोल कौन रहे?
2: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
3: अच्छा, जी जी जी जी
2: जी, बताइएगा कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: तो मुझे सुनना है फिल्म एक महल हो सपनों में, सपनों का।
2: जी,
3: लता जी ने गाया है, फिल्म में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से ये भूले बुझेगा क्या।
2: पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
3: जी जी जी जी, धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम
1: हाँ अमिता जी नमस्ते।
0: जी। नमस्कार
1: मैं ग्राम उजान बोल रहा, गेंदालाल परिहार।
0: श्री परिहार जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया मैम जी। मैं
0: क्या चल रहा है?
1: बैठे हैं फ्री है तो फोन लगा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं।
0: क्या बात है जी। हम ये पूछ रहे थे कि जब आप लोग बिल्कुल फुर्सत में होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं लगता कि घर परिवार के साथ या बच्चों के साथ समय गुजारा जाए?
1: हाँ सब, अभी क्या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सब बच्चों के साथ ही रह रहे हैं। क्या हाँ
0: उनसे दोस्ती करने की, उनको जानने समझने की कोशिश की है?
1: मैम, मेरे दो पोते हैं छोटे छोटे, तो
0: जी
1: उनके साथ में रहता हूँ, जब उनको समय बिताता हूँ उनके साथ में
0: समय बिताते हैं तो
1: जी।
0: कुछ खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं या
1: अभी क्या, एक 5 साल का है वो स्कूल जाता है, अभी छोटा है 1-2 साल का है, तो उसकी छुट्टी चल रही है। अभी मामा घर गया है बड़ा वाला, तो छोटा है साथ में, तो उसके
0: अच्छा।
1: साथ खेलते रहते हैं दिन
0: हाँ,
1: भर उसको।
0: ये हम ऐसा लगता है कि जो फुर्सत का समय है उसे यदि हम अपने घर परिवार के साथ गुजारते हैं तो रिश्ते और बेहतर होते हैं, मजबूती से बन पाते
1: जी
0: हैं।
1: मैम,
0: तो बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है वो 7 दिन,
0: वो 7 दिन, और
1: इसका
0: गीत
1: गाना
0: के
1: है
0: बोल
1: कंगना कंगना।
0: आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते।
0: जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं
1: हरियाल जाटल, जिला सिपरी, मध्य प्रदेश।
0: जी? कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी बढ़िया है। मौसम
0: बड़ी,
1: ठंडा है थोड़ा सा, कल पानी बस गया 2 दिन,
0: अरे वाह
1: और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है।
0: बिल्कुल, थोड़ी सी राहत मिल गई है, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो सिर्फ पानी गिरा या थोड़ा आंधी तूफान भी आया?
1: हाँ, आंधी भी आया, तूफान भी आया, आंधी ना पानी दोनों बराबर थे। हमको
0: दोनों बराबर थे। कौन सा गीत कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: सुना दो, दिल तो पागल है,
0: इसका कौन सा गीत?
1: गाने के बोल भी यही है और फिल्म का नाम भी यही है।
0: पहुंच रहा है आपकी पसंद का गीत आप तक।
1: मैडम जी एक बात कहना चाहता हूँ,
0: जी बोलिए।
1: मैंने मोबाइल से सुनता हूँ रेडियो, तो आजकल इससे मिस्टेक आ रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं।
0: क्या दिक्कत आ रही है उसमें?
1: दिक्कत ये आ रही है कि मैंने कल शाम को 5:30 बजे खोला और 6:30 बजे बंद हो गया, समझो। तो एक हफ्ते से मैंने रेडियो नहीं सुन पा रहा हूँ मोबाइल पर, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
0: प्रॉब्लम जब अपन मोबाइल से सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने मोबाइल की भी हो सकती है और नेटवर्क की भी हो सकती है। जरूरी
1: अब
0: नहीं है
1: ने,
0: कि वो
1: ने,
0: रे
1: नेटवर्क तो ये मान लो कि अपन आइटल का फोन चला रहे हैं, सादा वाला। हाँ
0: कई बार जैसे मौसम आपने कहा खराब है ना,
1: हाँ
0: मौसम का
1: हाँ
0: बहुत फर्क पड़ता है नेटवर्क पर, दोनों ही
1: हाँ
0: नेटवर्क पर, चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो या आकाशवाणी के कार्यक्रम जिन ध्वनि तरंगों से आप तक पहुंच रहे हैं। तो
1: हाँ तो
0: थोड़ा
1: मैं
0: सा
1: कभी कभी 1 घंटा के लिए, कभी 2 घंटे, कभी 1 हफ्ते से परेशानी आ रही है सर।
0: उसको आप एक काम कीजिएगा, एक बार पूरा बंद करके रीस्टार्ट कीजिए और जो आपका मोबाइल ऐप है जिस पे आप सुनते हैं उसे
1: हाँ जी,
0: रिफ्रेश कर लीजिएगा। संभवतः जो दिक्कत आपको आ रही है वो नहीं
1: हाँ
0: आएगी। ठीक
1: ठीक है।
0: है।

0: फोन कर रही हूँ गीत
1: हेलो
0: सुने कार्यक्रम।
1: जी, मेरा नाम मोलिना रॉय है, मैं सतना से बोल रही हूँ।
0: मोलिना,
1: मोलिना
0: मोलिना, वाह,
1: जी।
0: एक नए तरह का नाम है, तो इसका मतलब मीनिंग जान सकते हैं क्या होता है?
1: हाँ, वैसे तो संस्कृत में एक शब्द है मलिन,
0: जी
1: तो उसी का ही वर्जन है जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया।
0: जी जी जी
1: तो मोलिना का मतलब होता है मन की मलिनता को दूर करने वाला, मोलिना।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है आपका।
1: थैंक यू।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और
0: जी,
1: मेरी छोटी सी फुलकी की दुकान है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फुल्की आप घर पर ही बनाती हैं?
1: हाँ, सब मटेरियल में घर का बिना कलर यूज किए प्राकृतिक रूप का बनाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। बनाने का काम भी आप करती हैं और दुकान लगाने का भी आप करती हैं, या उसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं?
1: मेरे परिवार, मेरी दो बेटियां और मेरे हस्बैंड और मैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो फुल्की के साथ और क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है, और क्या ऐसा विशेष होता है कि लोग आपके यहाँ खाना उसे पसंद करते हैं?
1: वो जल जीरा मेन, और फुल्की
0: अच्छा,
1: की क्रंचीपन,
0: हाँ,
1: और मेरे देने का तरीका, मतलब साफ सफाई में मैं विशेष ध्यान रखती
0: जी
1: हूँ
0: जी
1: कि
0: जी
1: किसी
0: जी
1: प्रकार का गंदगी ना हो,
0: हाँ
1: जितना मुझसे बन सके।
0: जी जी जी
1: मैं जो सामान यूज करती हूँ वो अच्छे वाले करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए भी मैं अच्छा सोच सकती, तो और बच्चे जो आते हैं तो वो भी मेरे लिए, मेरे बच्चे समान ही हैं, तो
0: बिल्कुल
1: मैं
0: सही
1: उन्हें
0: बात है।
1: अच्छा दूँ।
0: जी, ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चीज़ दे रहे हैं वो ताज़ी हो और
1: जी
0: स्वच्छ हो, तो उसका स्वाद तो जो होता है वो आता ही है, साथ ही सेहत पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। एक चीज और
1: जी
0: जानना चाहेंगे आप, कि आपको ऐसा लगता है किसी जगह विशेष पर दुकान होने से ज्यादा फायदा होता है चीजों में?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ,
1: आप यदि कोई काम कर रहे हो और वो एरिया देखा जाए कि लोकेशन, मतलब वो कितना अच्छा काम करेगा,
0: जी,
1: और आप अपना काम भी यदि अच्छा रखेंगे, तो शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर
0: जी
1: जहाँ धीरे धीरे आपका काम लोगों को पसंद आने लगता है, तो एक टाइमिंग बन जाती है कि इतने समय में वहाँ ये चीज मिल जाएगी।
0: जी
1: तो उसी समय मेरा जैसे बंदा हुआ कि मैं सिर्फ इवनिंग में खोलती हूँ, और मॉर्निंग में मैं अपने घर का काम करती हूँ, दुकान का काम करती हूँ, बच्चे कॉलेज जाते पढ़ने के लिए,
0: हाँ,
1: तो उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब वो आते हैं तो मेरा सारा सामान सेट कराते हैं, गाड़ी में रखवा के देते
0: जी,
1: हैं, फिर मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बल्कि आपसे बात करके, जानकर तो अच्छा लगा ही,
1: जी
0: लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि अपन किसी भी काम को यदि बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं और छोटी
1: जी
0: छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो यकीनी तौर पे हमें काम करने का एक संतोष तो मिलता ही है। हमारा नाम और हमारी चीज़ दूर दूर तक पहुंचती है। तो बताइए,
1: जी
0: कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: 20 ज़ारा का जी,
0: वीर ज़ारा का कौन सा?
1: दो पल के यादों का कारवा।
0: पहुंच रहा है आप तक, धन्यवाद।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।

0: फोन करें गीत
1: हेलो।
0: सुने कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार मैडम,
0: जी नमस्ते
1: इंदौर से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ मैडम। मैं
0: जी। अनिल जी कैसे हैं?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है?
1: बस अब छुट्टी का समय खत्म हो रहा है मैडम, कल से स्कूल चालू हो जाएंगे। हाँ
0: अच्छा, कल से ही शुरू हो रहे हैं?
1: हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं,
0: जी।
1: तो एक्चुअली क्या 3 तारीख से 11वीं 9वीं और 11वीं के एग्जाम है,
0: अच्छा, तो मतलब
1: इसलिए
0: ये टीचर्स के लिए छुट्टियां धीरे धीरे धीरे कम से कम ही होती चली जा रही हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपके हिसाब से आपकी नए सेशन के लिए?
1: बच्चे जो नए आएंगे उनको हमको ने स्वागत करके और मोटिवेट स्वागत करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है कि आप अभी पुरानी स्कूल में थे, जब तक आपने बहुत इंजॉय किया, लेकिन अब ये बड़ी क्लास हो गई है तो इसमें तुम्हारा कोर्स भी बढ़ गया है, अब आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी पहले की अपेक्षा, क्योंकि
0: जी,
1: मिडिल और प्राइमरी के बच्चे होते ही है, तो हाई स्कूल में थोड़ा कोर्स बढ़ जाता
0: बढ़
1: है।
0: जाता है। और आपको ऐसा लगता है अनिल जी कि ये सब करके बच्चे थोड़े मोटिवेट होते हैं?
1: मैडम कहना चाहिए ये कि टीचर को यदि उसको गाइड करता है तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को,
0: जी,
1: ये वाली बात है।
0: हाँ, अच्छी चीज है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: फिर तेरी कहानी याद आई मैडम,
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हेलो नमस्ते
0: जी। नमस्कार,
1: ग्राम सुराना जिला से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
0: जी खान साहब, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है। खेत में है मैडम?
0: क्या काम चल रहा है खेत में अभी?
1: अभी तो बस अगली फसल की जो सोयाबीन बोएंगे खेत में, बस उसी की तैयारी चल रही है। अब पर्याप्त पानी गिरेगा तो बोनी होगी।
0: बिल्कुल, तो बोहनी के पहले जो खेत की तैयारी होती है वो किस चीज से कैसे करते हैं आप?
1: अभी तो गहरी जुताई, जैसे कल्टीवेटर है, पंजा है, इस तरह करते हैं।
0: तो कितने दिन लग जाते हैं खेत की तैयारी में?
1: मैडम अब तो क्या बहुत से साधन है, ट्रैक्टर के पास 2-4 दिन की मुश्किल से।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: ये यादगार फिल्म का सुनना है
0: जी,
1: लता जी की आवाज में गीत है, जिस पथ पर चला।
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद।
1: ओके ओके, थैंक यू, है ना
2: जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं
0: जी। कैसे हैं,
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अब इस समय तो मैडम जी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो थोड़े दिन बाद गेहूँ बाकी मक्का का की कटाई होने वाली है। फरुखाबाद
0: फरुखाबाद का मौसम क्या कह रहा है?
1: का मौसम तो ये है, 45 तापमान पहुंच गया, 45 पे।
0: इस समय तापमान लगभग सभी जगह इतना ही हो रहा है, और जितना तापमान मीटर स्केल पे कि 45 है कि 42 है कि 43 है, उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है इस वक्त।
1: हाँ, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी तो मौसमी फल का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कलिंदे, खरबूजा, ककड़ी है, खीरा है, और उनका सेवन करना चाहिए। खीरा है तो उनका
0: जी
1: सेवन करना चाहिए,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और पक्षियों को पानी रखना चाहिए। कहीं भी छत पे हो तो उनको पानी पर रखना चाहिए, दाना पानी रखना चाहिए, और भैंस पगु का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पानी टाइम से देना चाहिए, चारा पानी टाइम से देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये सब करना चाहिए या आप भी करते हैं?
1: करना चाहिए और करते भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: आज शुरुआत फिल्म का नाम है दिल,
0: दिल।
1: और गाने बोला है ओ प्रिया प्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं।
0: और क्या काम चल रहा है?
1: अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, फुर्सत है, अभी तो बारिश का इंतजार है।
0: बारिश का इंतजार है तो ये
1: जी
0: फुर्सत का समय कैसे निकालते हैं?
1: जी कुछ नहीं, मोबाइल के जरिए से मोबाइल में फोन लगाते हैं, फिल्म संगीत सुनते रहते हैं, टाइम
0: अच्छा,
1: गुजर जाता है, कुछ टाइम निकल जाता है, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम है त्रिनेत्र।
0: त्रिनेत्र
1: जी,
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: एक गाना है ना कुमार सानू की आवाज में, धर्मेंद्र और मिथुन दादा पे शर्मा गया है, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वह उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEADV.ac.in पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस साल मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

करके हैं। गीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है बेरड़ी से और श्रोता हैं राजेश, गुंजन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

श्रद्धा, अभय, परम, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता धामनी से हैं, समयलाल, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

मन्ना डे और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शोले से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। फरमाइशा में आई है गोला बाजार बक्सर से श्रोता है।

गीतकार हैं मजरूह संगीतकार आरडी बर्मन। फरमाइश इसके लिए आई है हमें नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता बलिया से हैं, ओम प्रकाश, ऊषा, अमित और प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवदेश, प्रीति और नवनीत।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता हैं हरदेव, बलविंदर, जयतेग और मीरा।

अगला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश हमें आई है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से, श्रोता हैं राधिका, अनिष्का और तन्मय, साथ में हैं रोशन, कौशल्या, हेमलता, देवांगन, डिंपल। अगले श्रोता दतरेंगी से हैं, द्वारिका, किशोर, दीपक और झावेंद्र। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकियां का छठवां भाग।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की छठी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरा मुश्ताक को अपने घर वालों से अलग होकर रहने के लिए कहती है। इस बात पर मुश्ताक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लिए बिना वापस लौट जाता है। फाता सायरा को मुश्ताक से तलाक दिलवाने के मंसूबे बनाने लगती है। और अब आगे।

0: आओ फाता, आओ बैठो। कैसे आना हुआ?
1: अरे बहुत जरूरी काम था तुमसे।
0: कहो क्या काम है?
1: नहीं, पहले कबूल करो कि ये काम करोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे।
0: अरे पहले काम तो बताओ।
1: नहीं नहीं, पहले कबूल करो।
0: अच्छा कबूल करता हूँ, किसी से नहीं कहूंगा।
1: एक तलाकनामा भिजवाना है।
0: तलाकनामा किसका?
1: सारे का।
0: सारे का तलाकनामा?
1: हाँ सारे का तलाकनामा। मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक सारे को तलाक दे दे तो मैं उसका निकाह कहीं और कर सकूं।
0: फाता, लेकिन मुश्ताक में क्या कमी है?
1: अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने मेरे सामने ही सारे को मारा था?
0: सुना तो था, पर इसका ये नतीजा निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम था।
1: अरे मुझे ही क्या मालूम था कि मेरा अपना सगा भाई ऐसा निकलेगा और वो उसका लड़का मुश्ताक। अरे देखने भर से ही शरीफ लगता है। अरे खुदा ना करे किसी को ऐसा शौहर मिले जो एक माँ के सामने उसी की बेटी को मार सकता है, वो पीछे कैसा बर्ताव करता होगा?
0: सो तो है, पर यह तो सारे घरों में होता ही रहता है। थोड़ा ऊंच नीच तो चलता है।
1: हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, मैं भी मानती हूँ, पर पानी जब सर से ऊपर उठ जाए तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना।
0: सारिये इस तलाकनामे को मानेगी?
1: मानेगी क्यों नहीं, मैं उसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ ये सब।
0: फाता एक बार तुम सोच लो, इतनी जल्दबाजी क्या अच्छी है? सारे और मुश्ताक के बारे में तो सोचो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार? हाँ करते थे, अब नहीं। मैंने जो देखा है उसके बाद तलाक होना ही एक जरिया है जो मेरी बेटी को बचा सकता है।
0: तुम्हारे घर की बात है तुम जानो। हाँ मुझे कब जाना है?
1: अच्छा तो सुनो, कल ही तुम मुश्ताक से मिलकर तलाकनामे पर सहमति ले लेना और उस पर दबाव बनाना कि तलाक के लिए मान जाए।
0: ठीक है, मैं कल ही मुश्ताक के पास जाता हूँ।
1: और याद रहे, काम होने से पहले किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।
0: जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
1: ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।

0: फजी, वक्त कितना बदल गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की सुनना ही नहीं चाहते।
1: हाँ, उनके ख्यालात बदल रहे हैं और हमारे ख्यालात जैसे पीछे छूट गए हैं। अब उनके और हमारे ख्यालात मेल नहीं खाते।
2: करीम चाचा, आपसे कोई बाहर मिलने आया है।
0: कौन है?
2: वो मैं नहीं जानता, आपका पता पूछ रहा था। वो बाहर खड़े हैं।
0: कौन हो सकता है? अच्छा जा, उन्हें अंदर भेज दे।
2: ठीक है चाचा।
3: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: मैं मुश्ताक से मिलने आया था।
0: कहिए, क्या काम है मुश्ताक से?
3: फाता ने तलाकनामा भिजवाया था।
1: तलाकनामा?
0: फाता ने तलाकनामा भेजा है?
3: फाता चाहती हैं कि मुश्ताक सादे को तलाक दे दे।
1: क्या?
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
3: फाता ने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक को बुलवा दे तो बेहतर होगा।
0: फजी, मुश्ताक को तो भेजना।
1: हाँ, भेजती हूँ।

0: तो आप आए हैं?
1: हाँ, मैं तलाक नामा लाया हूँ।
0: अगर आप अपनी इज्जत की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। इस मुद्दे पर मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा।
1: नाराज होने की कोई बात नहीं, जब सारे ही तलाक चाहती हैं तो आपको क्या परेशानी है उसमें?
0: नहीं, यह सच नहीं है। सारे ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे तलाक नहीं ले सकती।
1: मुश्ताक, मैं तलाक का संदेशा लाया हूँ और आप सारे को तलाक दे दे, सारे भी ऐसा ही चाहती हैं।
0: आप अपनी काली जुबान को बंद करें और यहां से चले जाएं, यही आपकी बेहतरी के लिए ठीक होगा।
2: मुश्ताक, घर आए मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते।
0: मेहमान? मेहमान मेहमान की तरह होते हैं, यूं तलाकनामा लेकर नहीं आते।
2: आप अभी जाएं, एक बार फाता से बात कर लेने के बाद हम कुछ जवाब देंगे।
1: सुनिए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं, सारिये भी यही चाहती हैं कि मुश्ताक उसे तलाक दे दे, और इसलिए फाता ने मुझे तलाकनामा लाने को कहा है।
0: लाइए, मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: मुश्ताक, ये तुम क्या कर रहे हो?
0: अगर सारे यही चाहती है अब्बू कि वो मुझे तलाक दे, तो मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: गुस्सा ना करो मुश्ताक, वक्त की नजाकत को समझो। ये वक्त आराम से सोचने और इस परेशानी

0: का हल निकालने के बारे में सोचने का है, न कि गुस्से में गलत फैसला लेने का।
1: यह गलत फैसला नहीं है अब्बू। जब सारे ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक देना ही बेहतर होगा।
0: मुश्ताक, परेशानी का ये हल नहीं है, तुम्हें समस्या की तह तक जाना चाहिए। आखिर कोई तो वजह होगी जिसने तलाक लेने की नौबत ला दी।
1: अब्बू, सारे चाहती है कि मैं आप लोगों से अलग रहूं।
0: हाँ?
1: और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही वजह है कि सारे मुझसे तलाक चाहती है।
0: जहां तक मैं जानता हूं, सारे ऐसा नहीं कर सकती। देखो मुश्ताक, तुम जरा फिर से सोच लो। तुम्हारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। देखो, सारे नादानी कर रही है, उसे समझाया जा सकता है। बेटा, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते टूटते। इतनी जल्दी ना करो, हमें जरा सोचना चाहिए।
1: अब्बू, अब कोई फायदा नहीं है। मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूँ।
2: मुश्ताक, जल्दी ना कर बेटा। सारे अच्छी लड़की है और नेक दिल भी। कहीं कुछ दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश कर बेटा। सारे अगर तेरे साथ रहना चाहती है तो यही सही। तू कुछ दिन उसके साथ अलग रह ले। तू समझाएगा तो शायद मान जाए।
0: हाँ बेटा।
1: नहीं अम्मी, वो कुछ नहीं मानेगी। जिसके ख्यालातों में बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ना बची हो, उसे उसे परिवार के बारे में नहीं समझाया जा सकता।
0: मुश्ताक, हमारे लिए परिवार अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। जहां बाप दादाओं के साथ हमारे बच्चे उस सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है बेटे, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे में सारे का ये सोचना कि वो तुम्हारे साथ अलग रहे, तो इसमें गलत क्या है?
1: अब्बू, आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप यही चाहते रहे हैं कि आपके बच्चे खुश रहे। और इसीलिए आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सारे की बातों को मान लूं। यह मुझे कबूल नहीं है अब्बू, और आप मुझ पर यह मानने का दबाव भी ना डालें।
0: मुश्ताक, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर जो फैसला तुम कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं, और ये तुम्हारे और सारे के लिए भी ठीक नहीं। देखो देखो बेटे, हम फाता और हसन भट्ट से बात करेंगे, वो इस मसले का हल निकालेंगे।
1: अब्बू, आप हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं।
0: हाँ बेटे।
1: पर सारे ऐसा नहीं सोच रही। फाता ने तलाकनामा लाने को आदमी भेजा है, और अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं।
0: देखो बेटे,
1: मैं तलाकनामे पर दस्तखत कर देता हूँ। ये लीजिए।
2: मुश्ताक,
0: बेटा।
2: मुश्ताक, दरवाजा खोल मेरे बच्चे। मुश्ताक, दरवाजा खोल मेरे बच्चे, दरवाजा खोल। अजी, सुनते हो? मुश्ताक ने दरवाजा बंद कर रखा है।
0: क्या?
2: मुश्ताक,
0: अरे मुश्ताक, ऐसा ना कर बेटा। देख, मैं पहले ही कह रहा था जल्दी ना कर। अरे अब हमें सजा ना दे बेटा, दरवाजा खोल बेटा।
2: मुश्ताक, दरवाजा खोल दे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुझे इसका गम है, पर अपने साथ जुल्म ना कर बेटा। बाहर आ जा बेटा, दरवाजा खोल।
0: मुश्ताक दरवाजा नहीं खोलेगा।
2: अजी, कैसे नहीं खोलेगा? खोलेगा क्यों नहीं? मुश्ताक, दरवाजा खोल बेटा, खोल दे।
0: वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारी और हमारी बात सुने और माने। छोड़ दो उसे, जब भावनाओं की चोट लगती है तो ऐसा ही होता है। वो सारे से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब हमें सारे के इस फैसले से तकलीफ हो सकती है तो भाई मुश्ताक की हालत तो और भी खराब होगी। आखिर सारे उसकी बेगम रही है।
2: मुश्ताक का ये हाल उसी के कारण है। अरे यहाँ भी तो अच्छी भली थी, मायके गई तो ना जाने क्या हो गया।
0: अरे अब छोड़ो उसे, अब हमें मुश्ताक को संभालना है।
2: पर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलता, हम क्या करें।

0: पाता पाता, देख मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ।
1: लगता है काम हो गया। काम हो गया क्या?
0: होता क्यों नहीं, पहले तो मुझे देखते ही आग बबूला हो गए थे, लेकिन मैं भी अड़ गया कि तलाक नामा तो तुम्हें देना ही होगा, सो आखिर मुश्ताक को मानना ही पड़ा।
1: और मुश्ताक के अब्बा करीम नहीं थे?
0: करीम तो था, पहले तो मुश्ताक को समझाया, फिर मुश्ताक ने तलाक नामा पे दस्तखत कर दिया और करीम भी चुप हो गया।
1: तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब सारे और मुश्ताक को तलाक से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए मुबारक दिन है या अल्लाह।
0: अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
1: इस तलाक नामे की खबर अभी किसी को ना देना।
0: जैसा तुम कहो, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। अच्छा मैं चलता हूँ।

0: अम्मी अम्मी,
1: हाय सारे तुम।
0: अम्मी किसके तलाक नामे की बात कर रही हैं?
1: किसी की नहीं, तुम जाओ अभी, तुम जाओ।
0: बताओ ना अम्मी, ये किसका तलाक नामा है?
1: अरे हाय, मेरा तो नसीब फूट गया। हाय मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई।
0: तो रो क्यों रही है?
1: अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खोटा निकला।
0: बेवजह अपने नसीब को क्यों कोस रही है अम्मी?
1: ना कोसूं तो क्या करूं मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था कि मेरे भाई का लड़का ही ऐसा करेगा।
0: आखिर हुआ क्या है अम्मी?
1: ये तलाकनामा आया है।
0: तलाकनामा?
1: हाँ तलाकनामा, मुश्ताक ने भेजा है।
0: क्या? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता अम्मी।
1: नहीं कर सकता? मुश्ताक ने ऐसा ही किया है, उसने तलाकनामे पर दस्तखत भी किए हैं।
0: नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता।

0: अरे पाता, ये क्या हो रहा है? सारा है क्यों रो रही है?
1: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है।
0: क्या, मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है?
1: हाँ, अभी एक आदमी मुश्ताक का तलाक नामा लेकर आया था, जिस पर मुश्ताक के दस्तखत भी हैं।
0: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है।

0: नहीं, मैं अभी जाता हूँ, करीम व फजी से बात करनी होगी।
1: अरे अब कोई फायदा नहीं है, मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया है, अब उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं, समझे?
0: अरे कोई इतनी आसानी से तलाक कैसे दे देगा, मैं बात करूंगा, मुश्ताक से पूछूंगा कि उसने सारे को तलाक क्यों दिया।
1: खबरदार जो वहां गए, जिसने सारे को बदनाम किया उसके दहलीज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: फातिमा, अगर कहीं गलती है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, पर हमें पता तो चले कि तलाक देने की वजह क्या है।
1: अरे वजह जो भी हो, तलाकनामा भेजने के बाद हमारा मुश्ताक से कोई रिश्ता नहीं है।
2: मुश्ताक,
0: सारे बेहोश हो गई। फाता, पानी लाओ, उठाओ इसे।
1: अभी लाती हूँ।
0: अरे जल्दी करो।

0: अरे अरे सुनो भाई, सुनो सुनो। अरे
1: हाँ
0: कुछ कुछ बातें करनी हैं, बहुत जरूरी।
1: कहो फाता, क्या काम पड़ गया?
0: अरे भाई, एक लड़का ढूंढना है,
1: लड़का किसके लिए?
0: अपनी सारे के लिए।
1: सारे के लिए?
0: अरे हाँ, मुश्ताक ने तो सारे को तलाक दे दिया है ना, अब उसका दूसरा निकाह करूंगी।
1: फाता, जो लोग सारे को जानते हैं वो उससे निकाह करेंगे नहीं, सो लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
0: या खुदा, मुश्किल क्या है, सारे को एक बार जो देख ले वो निकाह से इनकार नहीं कर सकता।
1: हाँ वो तो है, लेकिन सारे के लिए कैसा लड़का चाहिए?
0: देख, लड़का ऐसा हो
1: हाँ
0: जो अच्छा खाता कमाता हो, और अगर वो घर जमाई भी बनकर रहे तो मैं अपना घर उसे बड़ी खुशी से दे सकती हूं।
1: देखता हूं, अगर ऐसा लड़का मिलता है तो मैं बताता हूं।
0: लेकिन भैया, ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब तू जा।
1: जी जाता हूं, अगर कोई बात बनी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज बेटा।
2: पता, ये आदमी क्यों आया था?
0: काम था।
2: उस आदमी से क्या काम पड़ गया तुम्हें?
0: अरे सारे के लिए लड़का ढूंढने को कहा है।
2: फाता, तू ये क्या कर रही है?
0: ओफो, अपनी सारे के लिए लड़का देख रही हूं, और उसके लिए भी यही ठीक होगा, शादी करके अपने घर चली जाए।
2: फाता, अभी अभी उस बेचारी को ये सदमा लगा है और तू उसके लिए एक लड़का देख रही है?
0: या खुदा, उसके भले के लिए ही कर रही हूं। मुश्ताक और उसके घर वालों को मैं दिखा दूंगी कि मेरी लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है।
2: अरे फाता, ये समय सारे को सहारा देने का है और तू उसे एक और सदमा देना चाहती है?
0: मैं सारे को रानी बनाना चाहती हूं।
2: फाता, जमीन पर रह और जमीन की सोच, आसमानों के ख्वाब पूरे नहीं होते। बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी और उसका सदमा वो अभी झेल भी नहीं पाई है, और तुम उसके लिए?
0: अरे बंद करो ये अपनी काली जुबान, जब देखो तो बुरा ही सोचोगे। अरे कभी तो अच्छा बोला करो।
2: फाता,
0: एक बात सुन लो मेरी, मैं सारे की शादी करूंगी, और अगर तुम सारे की खुशी चाहते हो तो चुपचाप सिर्फ देखते रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
2: वादा, तुम सारे के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम मां होकर उसके भले के नाम पर तुम पाप कर रही हो। मुझे दुख है कि तुम मां होकर उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही हो।
0: बेटी की फिक्र है लेकिन तुम्हें नहीं। इंशाल्लाह अब मैं सारे के लिए ऐसा लड़का पसंद करूंगी जो खूब दौलत कमाता हो और सारे से मोहब्बत करे, साथ ही हमारी भी मदद कर सके।
2: वादा, दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी इन बातों से। अरे बाप हूं मैं उसका, उसकी खुशी की फिक्र मुझे भी है, पर मैं तुम्हारी तरह मतलब फरोश नहीं हूं। जो अपने सुख के लिए बेटी का रिश्ता किसी पैसे वाले को दे दूं।
0: अम्मा चुप करो, या खुदा आज तक कोई काम मुबारक तरीके से करने दिया है मुझे? और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो जाकर रहो उस चौकीदारी कोठी में। मैं तुमसे पूछने नहीं जाऊंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: अरे फाता, तुम हमें सुकून से जीने दोगी या नहीं, या अपनी इन्हीं करतूतों से हमें परेशान करती रहोगी? अरे कभी तो चैन की जिंदगी बसर करने दो।
0: अम्मा मियां, चैन की जिंदगी बसर करने के लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो तुम्हारे पास नहीं है।
2: फाता, पैसों से चैन नहीं मिलता, समझी? और अगर तुम अपनी आदत को नहीं सुधारोगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कभी चैन नहीं मिलेगा।
0: जाते क्यों नहीं? अगर इतना ही दुख है मेरे काम से तो जाओ, जहां जाना चाहते हो चले जाओ, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत भी नहीं है। अब जो करूंगी मैं अपनी मर्जी से करूंगी।
2: या खुदा, तूने इसे किस मिट्टी का बनाया है? जाता हूं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, में सिसकियों का भाग 6। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वो उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvance.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि गाँव गाँव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कि उत्पादन भी बढ़े और खेत भी सुरक्षित रहे। प्रदेश में अभियान की शुरुआत आज रायसेन से लेकर रामसिया गांव से की जा रही है, और वियतनाम के दानांग में 17 वर्ष से कम आयु की एशियाई कुछ

स्वस्थ दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकारें अपनी रेडियो दोस्त दिव्या का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त और मस्त भी होंगे, साथ ही हमारे कार्यक्रमों को भी सुन रहे होंगे। श्रोता मित्रों, स्वस्थ और मस्त रहना हमारे हाथ में होता है, बस जरूरत होती है सतर्कता और जागरूकता की। अब जैसे हम बात करें कि हम अपने हेल्थ नंबर की, तो ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखकर डिजिटल रूप से एक जगह लिंक करता है, जिसे आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी कहा जाता है। यह नंबर आपको देश भर में एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देता है, जिसके जरिए आप डॉक्टर के पर्चे, लेबोरेटरी की रिपोर्ट और दवाइयों का विवरण डिजिटली रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री कहीं भी कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आप इसे आभा पोर्टल या मोबाइल नंबर आधार कार्ड का उपयोग करके भी बना सकते हैं। कोई भी नागरिक aabha.government.in पर जाकर अपना आभा नंबर बना सकता है। इस नंबर से आप अपनी डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य इतिहास को सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, सही जानकारियां हमें सुविधा और सुरक्षा दोनों में मदद करती हैं और हम विपरीत परिस्थितियों में भी सहजता से उचित व्यवहार करके अनुकूल परिस्थितियों में वापस आ सकते हैं। तो आप भी इस बात से तो सहमत होंगे, तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक भेंट वार्ता का, तो आइए आपको सुनवाते हैं घुटनों का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूँ मनीष गजभिये। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में घुटनों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। चलने फिरने में दर्द, सूजन, अकड़न जैसी समस्या लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है, क्या समय रहते इससे बचाव संभव है और आधुनिक चिकित्सा में इसके कौन कौन से प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इन्हीं विषयों पर जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप जैन को। आप वरिष्ठ ऑर्थोपेडिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है और यह किन वजह से होता है?
2: देखिए, घुटनों के दर्द के एक तो बहुत सारे कारण हैं
1: जी।
2: उनमें से यदि चोट लगी है
1: जी,
2: तो अपन ये देखेंगे कि घुटने की कौन सी हड्डी में चोट है, फ्रैक्चर है, या उसके अंदर में बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, मेनिस्कस रहता है, तो क्या कहीं उसमें इंजुरी है, इंजुरी के कारण चोट है तो वो बात अलग है, या इसके अलावा ओवर वेट है, इंसान का वेट ज्यादा है, डायबिटीज है, या उसको थायराइड है, या यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा हाई है, या कई और दूसरे रोग हैं, इन्फेक्शन अगर है, फीवर है, चिकनगुनिया है, उसके भी कारण से घुटनों में दर्द पॉसिबल है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है, हम आपसे जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और यह किस कारण से होता है?
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है आजकल, और एज के साथ का ताल्लुक है। घुटने के अंदर का जो जॉइंट रहता है उसमें बोन के ऊपर में कार्टिलेज नाम की एक चीज रहती है, वो कार्टिलेज उम्र के साथ साथ थोड़ा घिस जाता है, सभी का घिसता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। जो उस कैप्सूल के जॉइंट के कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण जो अपने को घुटने में दर्द होता है उसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं
1: जी।
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको एजिंग आर्थराइटिस बोला जाता है
1: जी।
2: और भी कई हैं कारण, जैसे कि अपने रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और इसके अलावा रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऐसे बहुत सारे कारण घुटने के दर्द के हैं, पर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, जो एज के साथ साथ होता है।
1: जी जी जी। महिलाओं में अक्सर देखा गया ये समस्या ज्यादा रहती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है?
2: जी जी, महिलाओं में ज्यादा होने का कारण उसमें क्या है कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर काम घर में या किचन में भी करती हैं तो वो बैठ के करती हैं
1: जी,
2: और जैसे कि पालथी मार देती हैं, पूजा अगर करती हैं तो वो भी बैठ के होती है
1: बिल्कुल,
2: और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर भारतीय महिलाओं की हाइट वो थोड़ी कम रहती है, वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हाइट और वेट के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स जिसको अपन BMI कहते हैं, तो उससे उनके घुटनों पे काफी ज्यादा आता है लोड, जिसके कारण से ये लेडीज में ज्यादा होता है
1: जी।
2: दूसरा एक कारण है कि जो भारतीय महिलाएं वो अपने खान पान का उतना ध्यान नहीं रखती हैं, ज्यादातर जो अच्छा खाना है या जो पौष्टिक भोजन है वो अपने फैमिली के बच्चों को या अपने हस्बैंड को, पुरुषों को दे देती है, और अपने ऊपर उतना ध्यान
1: नहीं देती है।
2: तो उनको पूरे पोषक तत्व जो है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो चीजें नहीं मिल पाती, ये भी एक कारण है कि लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी आपने। अब डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हमें गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
2: देखिए, घुटनों का दर्द ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग, खास तौर से लेडीज महिलाएं, उसको उतना ध्यान नहीं देती, वो ये मानती है कि अब हमारी एज हो गई है या पीरियड आना बंद हो गया, मीनो पॉज हो गया, उसको वो लाइफ अंग मान लेती है कि ये तो चूंकि एज हो गई तो ये हमको हो गई होगा। पर जैसे लक्षण जो आपने कहा कि कौन से ऐसे हैं जिसको अपन माने के अपने को जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें मेन ये है कि जब अपन अपने नॉर्मल काम रोज के जब अपने को करने में दिक्कत होने लगे, और जब मेडिसिन खाने की आवश्यकता पड़े, अपने को रोज डेली जो है आपका काम जो है बगैर गोली खा के ना हो, और कई बार गोली खाने के बाद भी आपको लगे कि उतना आराम नहीं होता
1: जी जी जी,
2: और जो नॉर्मल काम है जैसे पालथी मारना है या इंडियन टॉयलेट पे बैठना है स्क्वैट करना है, उकड़ू बैठना है
1: जी,
2: सीढ़ी चढ़ना उतरना है, तो ये जो रोजमर्रा के नॉर्मल काम है अगर इनमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए तो उसका मीनिंग ये है कि अब आपको उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता
1: है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आपको किसी भी तरह की परेशानी ज्यादा बढ़े उससे बेहतर है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से संपर्क कर किससे की परामर्श आप अवश्य लें। डॉक्टर साहब, घुटनों के दर्द की जांच किस तरह की जाती है? क्या आज के आधुनिक युग में एक्सरे, MRI या अन्य जांच किस समय आवश्यक होती है जब हमें लगता है कि हमें इसे कराना ही चाहिए?
2: देखिए, जब आपको नी में पेन स्टार्ट हो, घुटने का दर्द शुरू हो, सबसे पहली जो बेसिक जांच होती है वो एक्सरे होती है
1: जी।
2: घुटने के एक्सरे स्टैंडिंग अवस्था में लिए जाते हैं। नॉर्मली किसी चीज के लिए अपन जाते हैं एक्सरे के लिए, तो वो अपन किसी वो जो टेबल होती है उस पर कहते हैं आप पैर कर लीजिए, लेट जाइए। पर ये नी के लिए और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जांच के लिए एक्सरे दोनों घुटनों के होते हैं और खड़े होके होते हैं, लोड बियरिंग एक्सरे अपन बोलते हैं, स्टैंडिंग एक्सरे। उसमें एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, एक लेटरल व्यू होता है, मतलब एक सामने से लिया जाता है, एक साइड से लिया जाता है। मूल जो जांच है वो एक्सरे
1: जी।
2: इसके अलावा खून की भी कई किस्म की जांचें पेशेंट की होना चाहिए कि आखिर ये इनको क्यों हो रहा है और या इतनी स्पीड में क्यों हो रहा है, उतनी एज नहीं है कि जितना इनको हो रहा है
1: जी।
2: उसके लिए कई टाइप की खून की टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायबिटीज की है, थायराइड की है, यूरिक एसिड की है, विटामिन डी का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, फास्फोरस का लेवल है, विटामिन B12 का लेवल जो बॉडी में है, तो ये सारी टाइप की खून की जो जांचें हैं वो भी घुटने के दर्द के निदान में, उसके डायग्नोसिस में अपने लिए आवश्यक है
1: जी।
2: और इसके अलावा घुटने का दर्द है ये जो कार्टिलेज के घिसने के कारण हो रहा है, या जैसे और भी कई होते हैं रोग, गठिया अपन उसको जो बोलते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसके लिए एक RA फैक्टर की भी जांच होती है
1: जी।
2: यह भी खून की जांच होती है, उसको अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं। तो ये जांच भी घुटने के दर्द के जो होते हैं पेशेंट, तो उसमें की जाती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या हर घुटने के दर्द की सर्जरी की आवश्यकता होती है या बिना सर्जरी के भी इसका इलाज संभव है?
2: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल धारणा यह है कि साहब हम घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने खराब हो गए और आपका घुटना चेंज होगा, ऑपरेशन होगा। तो इसके बारे में मेरा कहना यह है कि मरीज जब आता है डॉक्टर के पास वो काफी लेट स्थिति में आता है
1: जी।
2: तो उसको पिछले कई सालों से घुटने में पेन होता है पर वो उस तरफ ज्यादा जो है ध्यान नहीं देता
1: जी।
2: ना वो दवा खाता है, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना वो अपना वेट पे ध्यान रखता है, एडवाइस भी नहीं मानता, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम विटामिन डी जो आवश्यक है वो भी नहीं लेता। तो चूंकि वो डॉक्टर के पास में देर से आता है, तब शायद वो चूंकि देरी से आने के कारण उसको कहा जाता है कि अब आपका घुटना इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि अब ये गोली दवा या किसी चीज से पूरा ठीक नहीं हो पाएगा
1: जी।
2: तो आपके घुटने चेंज होंगे। यदि व्यक्ति अपना ध्यान जो है स्टार्टिंग से

0: रखें, अपने वेट पे कंट्रोल रखें, और अगर कुछ दूसरे रोग भी हैं जैसे कि डायबिटीज है या थायराइड है तो वो उसका भी इलाज ले, और मेनली कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ले, बैलेंस डाइट ले, तो शायद इसकी स्थिति नहीं आएगी
1: जी।
0: बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास आ जाए।
1: जी जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट इसकी आवश्यकता आपने बताया कि लेट आने की वजह से होती है, तो क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
0: जी जी, नी रिप्लेसमेंट आजकल काफी आसान हो गया है
1: जी,
0: और अपने इंडिया में, अपने भारत वर्ष में भी काफी हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि जो इसमें इम्प्लांट यूज करते हैं वो अपने इंडियन जो अपनी बॉडी रहती है, भारतीय स्ट्रक्चर, तो उस बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आजकल आ रहे हैं इम्प्लांट, स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इसलिए आसान है आजकल, और यानी रोबोटिक भी हो रहा है, और 4 से 6 हफ्ते के अंदर में आदमी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है
1: जी।
0: तो नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद में जो अपन ने नया घुटना में इम्प्लांट किया है तो वो उसको काम के लायक करने के लिए 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक की फिजियोथेरेपी होती है कि जो अपन ने इम्प्लांट ज्वाइंट नया डाला है वो काम के लायक हो जाए, तो इसमें 4 वीक्स टू 6 वीक्स तक का टाइम लगता है
1: जी।
0: तो 6 हफ्ते तक का टाइम आप जो मान लीजिए आफ्टर 6 वीक्स जो है पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम
1: जी जी जी। और साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है,
0: खान पान का इस चीज में काफी ताल्लुक है, स्पेशली खान पान का ताल्लुक आपके वेट से है, ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं घुटने के दर्द वाले उनका वेट ज्यादा होता है, ओवर वेट रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, ज्यादातर का वेट ज्यादा रहता है
1: जी।
0: तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो उस कैलोरी के हिसाब से दिन में 3 टाइम कैलोरी को आप बांट के उतना ही फूड लीजिए, लेकिन जो बैलेंस डाइट अपने को आवश्यक है पूरा प्रोटीन स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 और फास्फोरस, तो अपन को कैलोरी कम हो लेकिन जो पोषक तत्व हैं जो आवश्यक वो अपने को पूरे पहुंच जाएं
1: जी,
0: और वेट भी अपना कंट्रोल रहे
1: जी।
0: तो खान पान का इस रोग में घुटने के दर्द का जो रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें खान पान का काफी महत्व है
1: जी। डॉक्टर साहब, घुटनों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी जी, देखिए मेनली ज्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम रहता है
1: जी,
0: और विटामिन डी भी कम रहता है, तो ओल्ड एज के लोग भी अपना डाइट बैलेंस लें, ताकत पूरी रहे, कैल्शियम और विटामिन लें, और सबसे मुख्य चीज तो ये है कि चोट ना लगे, चोट से बचें, तो एक अपना स्टिक लिए रहें, हाथ में स्टिक लिए रहें, जितना वॉक इनसे हो पा रहा है वो करें, और चोट इनको ना लगे ये ध्यान रखें। इसके अलावा कोई और भी जो अगर रोग है जैसे डायबिटीज है या अगर यूरिक एसिड इनका हाई है तो उसका भी इलाज लें
1: जी। बहुत अच्छी बात की आपने, और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह के घुटनों के दर्द की परेशानी का सामना न करना पड़े?
0: वेट पे कंट्रोल रखें, पौष्टिक खाना खाएं, खासतौर से दूध इत्यादि का करें सेवन, जिससे अपने को कैल्शियम और विटामिन डी मिले, और घुटने में जैसे ही आपको दर्द या कुछ भी चीज शुरू हो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस माने
1: जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये के बात सुनी। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर अपने पत्रों के माध्यम से, और आइए अब बारी एक प्यारे से गीत की है, तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बायोहैकिंग एक ऐसी ही तकनीक है जो अपने शरीर और दिमाग की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। विज्ञान, तकनीक और जीवन शैली में बदलाव की ये एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य लक्ष्य पोषण, नींद, व्यायाम और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उम्र को बढ़ाना और समग्र कल्याण करना है। बायोहैकिंग के मुख्य पहलू में शामिल हैं जीवन शैली में बदलाव, पोषण में सप्लीमेंट का सही उपयोग, एडवांस मेथड से सही पहचान और इलाज। बायोहैकिंग इस सिद्धांत पर काम करता है श्रोताओं कि हम अपने शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को हैक कर स्वयं के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सकें, जिसमें डेटा से विश्लेषण करके छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर लाया जा सके और फिर हम स्वस्थ और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाएं। इस बात के साथ ही आइए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस समय गर्मी खूब पड़ रही है तो बाहर निकलने से पहले खूब सारा पानी पिएं, खाली पेट ज़्यादा देर तक ना रहें। छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, आम का पन्ना जैसे पेय समय समय पर लेते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। सीजनल फलों का सेवन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस आशा के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दें। अपनी दोस्त दिव्या को स्वीकारें, नमस्कार।

अभी आप स्वास्थ्य दर्पण का लाभ ले रहे थे। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल की बात है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिएगा लोक भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है, प्रस्तुत है लोक भजन।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोक भजन। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी तड़दे की गाई गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रागिनी तरडे की गायी गजलें। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे रागिनी तरडे की गाई गजलें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

अपनी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड

0: की है ऑल्सो जैन ओल्ड नई पुरानी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स
1: दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ है। आज पूरा भारत आकाशवाणी परिवार सुमन कल्याणपुर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और ये गीत श्रद्धांजलि

और लीजिए एक बार फिर से सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफ़ी को सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और गाने आप सुनेंगे 2:30 बजे आपकी फरमाइश में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के, इतना खाद मत डालो, इतना कीट

0: शासक मत डालो कि जो मुझे मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक रुसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रुसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा। इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूजीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डों में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
4: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
5: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
4: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
6: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर

0: विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने लिया है अप्रैल फूल से, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। गीत लिखा है असरा जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। और हमारे सभी श्रोताओं, आकाशवाणी परिवार और पूरा भारत आज सुमन कल्याणपुर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहला गीत पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मुरार ग्वालियर से कालीचरण यादव, राजकिरण, दीपक यादव, चांदी यादव, प्रमिला देवी यादव, गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश फरियाद फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। केदार शर्मा ने इसको लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत के लिए हमें चिट्ठियाँ मिली हैं। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबैया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इन्होंने पसंद किया है बात एक रात की, फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और एसडी बर्मन ने संगीत दिया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत जब जब फूल खिले इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन, नमन जैन, शुभम जैन और सोनागिर दतिया से श्रेयांश जैन, विपुल जैन, इन सभी की पसंद पर। और इसी गीत को पसंद किया है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लछनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा ने। आप सभी की पसंद पर घर फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म में सुमन कल्याणपुर को। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और उषा खन्ना ने इसका संगीत तैयार किया है। ग्राम महसबाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुंग धाड़े, वाल्मीर धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोड़कर। और इसी गीत को पसंद किया है गुजरात नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कावले, नेहा भंड से सीमा, रूबीहा, फजल, पूनम नैनवा और सुषमा सलीम ने। तो आपकी पसंद पर हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। साधना जैन को नमस्कार। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गाँव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvanced.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि सुमन कल्याणपुर के मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने सांस्कृतिक जगत को समृद्ध किया। और मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

लीजिए एक नज़र डालते हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों पर जो कि आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम आपको सुनवाएंगे। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें कुछ चर्चा होंगी, फिल्मी गीत होंगे या आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। शाम 5:33 पर फिल्म संगीत, 6:30 और 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकेगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। 6:40 पर कार्यक्रम होगा आजकल और प्रादेशिक समाचार दर्शन होगा 6:45 पर। पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा लोक रंग, मंडी मौसम और कुछ गीत। विश्व दुग्ध दिवस पर कुछ बातचीत आप सुन सकेंगे। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा।

इसे एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन आप सुन सकेंगे।

हम आपको याद दिला दें कि रात्रि 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा का अब समापन होता है। शाम 5:02 पर मीडियम वेव पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारा कार्यक्रम होगा DTH पर। DTH पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगंध संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रागनी तरडे के गाए गजलें।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे रागनी तड़रे की गाई गजलें। डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। नई माँ इस फिल्म में सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। पीएल संतोषी ने इसका गीत लिखा है और रवि ने संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे घर घर की कहानी। इस फिल्म में शब्बीर कुमार को, चंद्रानी मुखर्जी, उत्तरा केलकर और साथियों को। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीता बप्पी लहरी का। आप सुन रहे हैं डीटीएच पर आकाशवाणी भोपाल से चित्रपट संगीत। अगला गीत सिलसिला फिल्म से, लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार और साथी हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है शिव हरी का।

सौदागर फिल्म में आप सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर, सुखविंदर सिंह और साथियों को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय सदानीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें ये स्थान मिला है। और मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम आईना।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, शहर भोपाल, जिसे नवाबों और बेगमात का शहर कहा जाता है, साथ ही साथ झीलों और तालाबों का शहर भी तस्लीम किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भोपाल के पानी की तासीर कुछ ऐसी है कि शहर में बाहर से आकर बसने वालों को ये अपना लगने लगता है, क्योंकि इस शहर का मौसम, यहाँ के दिलकश मनाजिर, तालाबों पर चहचहाते परिंदे और खुसूसन इस शहर की आबो हवा सभी को रास आ जाती है। भोपाल शहर को तालाबों और झीलों के शहर के तौर पर तो जाना जाता है, साथ ही इसे उर्दू जबान, अदब और शायरी का एक कदीम और अहम तरीन मरकज भी कहा जाता है। यहाँ की फिजा सदियों से शेरी व अदबी रवायत की अमीन रही है, जिसने बेशुमार शौरा और उदबा को कुर्ब जवार और दूर दराज से भोपाल आने पर मजबूर किया। उन्हीं में से एक नाम है शायर शाहिद मीर का, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 1949 में शहर भोपाल के नजदीक सिरोंज में पैदा होने वाला ये शायर भी शहर भोपाल के अदबी माहौल में आकर परवान चढ़ा और यहीं का होकर रह गया। शाहिद मीर की शायरी में बेशुमार रंग मौजूद हैं, जिन्हें जानने और समझने के लिए आइए हम सुनते हैं एक तकरीर, जिसका उन्वान है मध्य प्रदेश के शायर शाहिद मीर की शायरी, और मुकर्रर हैं।

0: जज्बों की आँच में तपकर जब शाहिद मीर के दोहों में ढलते हैं तो कुंदन से दमक उठते हैं। कौमी यकजहती पर भी देखिए कैसा लाजवाल दोहा तहरीर किया है। शब्द कीर्तन कर रहा चिड़ियों का एक गोल, भरा खुदा के नूर से धरती का माहौल। शाहिद मीर ने मजहबी रहनुमा और सियासी नुमाइंदों के अलावा फिल्मी नगमा नगार, मूसीकार और गज़ल गायकों पर भी शानदार दोहे कहे हैं। ऐसे फ़नकारों में मेहंदी हसन, ग़ुलाम अली, नौशाद, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी वगैरह के नाम ख़ास तौर से शामिल हैं। शाहिद मीर की शेरी विरासत पर बात हो और नज़मिया शायरी का जिक्र ना आए तो फिर गुफ्तगू अधूरी ही रहेगी, इसलिए कि शाहिद मीर को नज़्म कहने पर भी मलका हासिल था। इस तरह ये फ़ैसला करना ख़ासा दुश्वार है कि वो गज़ल के अच्छे शायर थे या फिर नज़्म के। उन्होंने आम मौजूआत से परे बेहद मियारी और अनोखी नज़में तख्लीक़ की हैं। मसलन क्लासिकल गुलूकारों जैसे उस्ताद अमजद अली ख़ान, उस्ताद अल्लाह रखा ख़ान, उस्ताद विलायत अली ख़ान, एम एस सुब्बा लक्ष्मी और मेहंदी हसन वगैरह पर लिखी गई नज़में शाहकार नज़में हैं। अलावा अजी हिंदुस्तानी क्लासिकल राग रागनियों जैसे राग ललित, राग भैरवी, राग बागेश्वरी, राग दरबारी, राग यमन में रवा दवा नज़में लिखकर इस बाब में उन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। और आखिरकार सरों जैसे नगर का ये बड़ा शायर शोहरत व इज़्ज़त कमाकर महज 69 बरस की उम्र में ये कहते हुए इस दुनिया से रुख्सत हो गया। न जाने क्या हुए अतराफ देखने वाले, तमाम शहर को शफाफ देखने वाले, गिरफ्त का कोई पहलू नज़र नहीं आता, मलूल हैं मेरे औसाफ देखने वाले।
1: दोस्तों, अभी आप महमूद मोहम्मद खान से उनकी तकरीर समाअत फरमा रहे थे जिसका उन्वान था मध्य प्रदेश के शायर शाहिद मीर की शायरी। सामीन, प्रोग्राम की अगली पेशकश में आइए हम सुनते हैं गज़ल गुलूकारा पहनाज मसानी की दिलकश आवाज़ में, और कलाम है शकील बदायूनी का, समाअत फरमाइए।

0: दोस्तों, अभी आप गुलुकारा पहनाज मसानी की दिलकश आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था शकील बदायूनी का। सामईन, शहर भोपाल उर्दू जबान अदब और शेरी रिवायात का तारीखी मरकज है। यहाँ नवाबी दौर से जारी मुशायरों की रिवायत ने शहर को शायरी का गहवारा बना दिया। यहाँ के नामवर शौरा ने उर्दू अदब को मुनफरिद लबो लहजा अता किया, जिसके सबब मुनफरिद लबो लहजा रखने वाले बेशुमार शौरा और अदबा यहाँ परवान चढ़े। उन्हीं में से एक नाम है आरिफ अली आरिफ का। आइए सुनते हैं शायर आरिफ अली आरिफ से उनका कलाम, उन्हीं की जुबानी समात फरमाइए।
1: गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, दो तीन शेर पहले गजल के मतलब देखिएगा कि यार तुम संजीदगी से इतना मत सोचा करो, कि यार तुम संजीदगी से इतना मत सोचा करो, मसलहत के कुछ तकाजे हैं ज़रा समझा करो। कि यार तुम संजीदगी से इतना मत सोचा करो, मसलहत के कुछ तकाजे हैं ज़रा सोचा करो। और शेर देखिएगा कि ज़र्रे नाचीज़ उस पर चांद छूने की ललक, कि ज़र्रे नाचीज़ उस पर चांद छूने की ललक, जो कभी पूरे न हो वो ख्वाब मत देखा करो। ज़र्रे नाचीज़ उस पर चांद छूने की ललक, जो कभी पूरे न हो वो ख्वाब मत देखा करो। शेर देखिएगा कि पापियों ने पाप धोकर इसको मेला कर दिया, कि पापियों ने पाप धोकर इसको मेला कर दिया, नेकियां कुछ इसमें डालो और इसे उजला करो। वो शेर देखिएगा कि बांटने से बढ़ती हैं खुशियां तो गम होते हैं कम, कि बांटने से बढ़ती हैं खुशियां तो गम होते हैं कम, अपने गम तुम दोस्तों के दरमियां साझा करो। बांटने से बढ़ती हैं खुशियां तो गम होते हैं कम, अपने गम तुम दोस्तों के दरमियां साझा करो। मकता देखिएगा कि सिर्फ आरिफ नाम रख लेने से कुछ हासिल नहीं, कि सिर्फ आरिफ नाम रख लेने से कुछ हासिल नहीं, लोग तुमको याद रखें काम कुछ ऐसा करो, लोग तुमको याद रखें काम कुछ ऐसा करो। दूसरी गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि मतलब है कि अब

ये शेर भी देखिएगा, शायद किसी काबिल हो। दर बदर आज है एक बूंद उजाले।

कल यही लोग थे सूरज के घराने वाले।

और ये शेर भी देखिएगा, गजल का आखिरी शेर, उनके अफ़आल से एहसास हुआ है मुझको,

0: से बसीरत है मियाँ, मैं समंदर देखता हूँ, तुम कनारा देखना।
1: कोई शेर देखिएगा कि
0: आपकी फहमो फरासत।

0: गली होगा इशारा देखना। मक्ता पेश कर रहा हूँ, आखिरी देखिएगा। कि नफरतें आरिफ ज़्यादा देर तक रहती नहीं, नफरतें आरिफ ज़्यादा देर तक रहती नहीं, आखरश जिंदा रहेगा भाईचारा देखना, आखरश जिंदा रहेगा भाईचारा देखना।
1: दोस्तों, अभी आप शायर आरिफ अली आरिफ से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आईना यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना, हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,
0: डीटीएच पर आकाशवाणी भोपाल।
1: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: कवि श्री राग तेलंग,
5: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से में सिसकियों का भाग 6।
6: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की छठी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरे मुश्ताक को अपने घर वालों से अलग होकर रहने के लिए कहती है। इस बात पर मुश्ताक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लिए बिना वापस लौट जाता है। फाता सायरे को मुश्ताक से तलाक दिलवाने के मंसूबे बनाने लगती है,

0: आओ फाता, आओ बैठो। कैसे आना हुआ?
1: अरे बहुत जरूरी काम था तुमसे।
0: कहो क्या काम है?
1: नहीं, पहले कबूल करो कि ये काम करोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे।
0: अरे पहले काम तो बताओ।
1: नहीं नहीं, पहले कबूल करो।
0: अच्छा कबूल करता हूँ, किसी से नहीं कहूंगा।
1: एक तलाकनामा भिजवाना है।
0: तलाकनामा किसका?
1: सारे का।
0: सारे का तलाकनामा?
1: हाँ सारे का तलाकनामा। मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक सारे को तलाक दे दे तो मैं उसका निकाह कहीं और कर सकूं।
0: फाता, लेकिन मुश्ताक में क्या कमी है?
1: अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने मेरे सामने ही सारे को मारा था?
0: सुना तो था, पर इसका ये नतीजा निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम था।
1: अरे मुझे ही क्या मालूम था कि मेरा अपना सगा भाई ऐसा निकलेगा और वो उसका लड़का मुश्ताक। अरे देखने भर से ही शरीफ लगता है। अरे खुदा ना करे किसी को ऐसा शौहर मिले जो एक माँ के सामने उसी की बेटी को मार सकता है, वो पीछे कैसा बर्ताव करता होगा?
0: सो तो हैं, पर यह तो सारे घरों में होता ही रहता है। थोड़ा ऊंच नीच तो चलता है।
1: हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, मैं भी मानती हूँ, पर पानी जब सर से ऊपर उठ जाए तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना।
0: सारी इस तलाकनामे को मानेगी?
1: मानेगी क्यों नहीं, मैं उसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ ये सब।
0: फाता एक बार तुम सोच लो, इतनी जल्दबाजी क्या अच्छी है? सारे और मुश्ताक के बारे में तो सोचो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार? हाँ करते थे, अब नहीं। मैंने जो देखा है उसके बाद तलाक होना ही एक जरिया है जो मेरी बेटी को बचा सकता है।
0: तुम्हारे घर की बात है तुम जानो। हाँ मुझे कब जाना है?
1: अच्छा तो सुनो, कल ही तुम मुश्ताक से मिलकर तलाकनामे पर सहमति ले लेना और उस पर दबाव बनाना कि तलाक के लिए मान जाए।
0: ठीक है, मैं कल ही मुश्ताक के पास जाता हूँ।
1: और याद रहे, काम होने से पहले किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।
0: जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
1: ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।

0: फजी, वक्त कितना बदल गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की सुनना ही नहीं चाहते।
1: हाँ, उनके ख्यालात बदल रहे हैं और हमारे ख्यालात जैसे पीछे छूट गए हैं। अब उनके और हमारे ख्यालात मेल नहीं खाते।
2: करीम चाचा, आपसे कोई बाहर मिलने आया है।
0: कौन है?
2: वो मैं नहीं जानता, आपका पता पूछ रहा था। वो बाहर खड़े हैं।
0: कौन हो सकता है? अच्छा जा, उन्हें अंदर भेज दे।
2: ठीक है चाचा।
3: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: मैं मुश्ताक से मिलने आया था।
0: कहिए, क्या काम है मुश्ताक से?
3: फाता ने तलाकनामा भिजवाया था।
1: तलाकनामा?
0: फाता ने तलाकनामा भेजा है?
3: फाता चाहती हैं कि मुश्ताक सादे को तलाक दे दे।
0: क्या? ये आप क्या कह रहे हैं?
3: फाता ने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक को बुलवा दे तो बेहतर होगा।
0: फजी, मुश्ताक को तो भेजना।
1: हाँ, भेजती हूँ।

0: तो आप आए हैं?
1: हाँ, मैं तलाकनामा लाया हूँ।
0: अगर आप अपनी इज्जत की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। इस मुद्दे पर मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा।
1: नाराज होने की कोई बात नहीं, जब सारे ही तलाक चाहती हैं तो आपको क्या परेशानी है उसमें?
0: नहीं, ये सच नहीं है। सारे ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे तलाक नहीं ले सकती।
1: मुश्ताक, मैं तलाक का संदेशा लाया हूँ और आप सारे को तलाक दे दें, सारे भी ऐसा ही चाहती हैं।
0: आप अपनी काली जुबान को बंद करें और यहाँ से चले जाएं, यही आपकी बेहतरी के लिए ठीक होगा।
2: मुश्ताक, घर आए मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते।
0: मेहमान? मेहमान मेहमान की तरह होते हैं, यूं तलाकनामा लेकर नहीं आते।
2: आप अभी जाएं, एक बार फाता से बात कर लेने के बाद हम कुछ जवाब देंगे।
1: सुनिए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं, सारिये भी यही चाहती हैं कि मुश्ताक उसे तलाक दे दे, और इसलिए फाता ने मुझे तलाकनामा लाने को कहा है।
0: लाइए, मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: मुश्ताक, ये तुम क्या कर रहे हो?
0: अगर सारे यही चाहती है अब्बू कि वो मुझे तलाक दे, तो मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: गुस्सा ना करो मुश्ताक, वक्त की नजाकत को समझो। ये वक्त आराम से सोचने और इस परेशानी का हल निकालने के बारे में सोचने का है, न कि गुस्से में गलत फैसला लेने का।
0: ये गलत फैसला नहीं है अब्बू, जब सारे ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक देना ही बेहतर होगा।
2: मुश्ताक, परेशानी का ये हल नहीं है, तुम्हें समस्या की तह तक जाना चाहिए। आखिर कोई तो वजह होगी जिसने तलाक लेने की नौबत ला दी।
0: अब्बू, सारे चाहती है कि मैं आप लोगों से अलग रहूं। और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही वजह है कि सारे मुझसे तलाक चाहती है।
2: जहां तक मैं जानता हूं, सारे ऐसा नहीं कर सकती। देखो मुश्ताक, तुम जरा फिर से सोच लो, तुम्हारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। देखो, सारे नादानी कर रही है, उसे समझाया जा सकता है। बेटा, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते टूटते, इतनी जल्दी ना करो, हमें जरा सोचना चाहिए।
0: अब्बू, अब कोई फायदा नहीं है, मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूँ।
3: मुश्ताक, जल्दी ना कर बेटा, सारे अच्छी लड़की है और नेक दिल भी, कहीं कुछ दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश कर बेटा। सारे अगर तेरे साथ रहना चाहती है तो यही सही, तू कुछ दिन उसके साथ अलग रह ले। तू समझाएगा तो शायद मान जाए।
2: हाँ बेटा।
0: नहीं अम्मी, वो कुछ नहीं मानेगी। जिसके ख्यालातों में बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ना बची हो, उसे उसे परिवार के बारे में नहीं समझाया जा सकता।
2: मुश्ताक, हमारे लिए परिवार अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है, जहां बाप दादाओं के साथ हमारे बच्चे उस सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है बेटे, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे में सारे का ये सोचना कि वो तुम्हारे साथ अलग रहे, तो इसमें गलत क्या है?
0: अब्बू, आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप यही चाहते रहे हैं कि आपके बच्चे खुश रहे, और इसीलिए आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सारे की बातों को मान लूं। यह मुझे कबूल नहीं है अब्बू, और आप मुझ पर यह मानने का दबाव भी ना डालें।
2: मुश्ताक, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर जो फैसला तुम कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं, और ये तुम्हारे और सारे के लिए भी ठीक नहीं। देखो बेटे, हम फाता और हसन भट्ट से बात करेंगे, वो इस मसले का हल निकालेंगे।
0: अब्बू, आप हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं।
2: हाँ बेटे।
0: पर सारे ऐसा नहीं सोच रही। फाता ने तलाक नामा लाने को आदमी भेजा है और अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं।
2: देखो बेटे,
0: मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूं। ये लीजिए।
3: मुश्ताक
0: बेटा।
3: मुश्ताक दरवाजा खोल मेरे बच्चे। मुश्ताक दरवाजा खोल मेरे बच्चे, दरवाजा खोल। अजी सुनते हो, मुश्ताक ने दरवाजा बंद कर रखा है।
2: क्या
3: मुश्ताक?
2: अरे मुश्ताक, ऐसा ना कर बेटा। देख मैं पहले ही कह रहा था, जल्दी ना कर। अरे अब हमें सजा ना दे बेटा, दरवाजा खोल बेटा।
3: मुश्ताक दरवाजा खोल दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे इसका गम है, पर अपने साथ जुल्म ना कर बेटा। बाहर आ जा बेटा, दरवाजा खोल
2: बेटा। दरवाजा नहीं खोलेगा।
3: अजी कैसे नहीं खोलेगा? खोलेगा क्यों नहीं मुश्ताक? दरवाजा खोल बेटा, खोल दे।
2: वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारी और हमारी बात सुने और माने। छोड़ दो उसे। जब भावनाओं की चोट लगती है तो ऐसा ही होता है। वो सारे से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब हमें सारे के इस फैसले से तकलीफ हो सकती है तो भाई मुश्ताक की हालत तो और भी खराब होगी। आखिर सारे उसकी बेगम रही है।
3: मुश्ताक का ये हाल उसी के कारण है। अरे यहाँ भी तो अच्छी भली थी, मायके गई तो ना जाने क्या हो गया।
2: अरे अब छोड़ो उसे, अब हमें मुश्ताक को संभालना है।
3: पर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलता, हम क्या करें।

0: पाता पाता, देख मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ।
1: लगता है काम हो गया। काम हो गया क्या?
0: होता क्यों नहीं, पहले तो मुझे देखते ही आग बबूला हो गए थे, लेकिन मैं भी अड़ गया कि तलाक नामा तो तुम्हें देना ही होगा, सो आखिर मुश्ताक को मानना ही पड़ा।
1: और मुश्ताक के अब्बा करीम नहीं थे?
0: करीम तो था, पहले तो मुश्ताक को समझाया, फिर मुश्ताक ने तलाक नामा पे दस्तखत कर दिया और करीम भी चुप हो गया।
1: तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब सारे और मुश्ताक को तलाक से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए मुबारक दिन है या अल्लाह।
0: अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
1: इस तलाक नामे की खबर अभी किसी को ना देना।
0: जैसा तुम कहो, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। अच्छा मैं चलता हूँ।

0: अम्मी अम्मी,
1: हाय सारे तुम।
0: अम्मी किसके तलाक नामे की बात कर रही हैं?
1: किसी की नहीं, तुम जाओ, अभी तुम जाओ।
0: बताओ ना अम्मी, ये किसका तलाक नामा है?
1: अरे हाय, मेरा तो नसीब फूट गया। हाय मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई।
0: तो रो क्यों रही है?
1: अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खोटा निकला।
0: बेवजह अपने नसीब को क्यों कोस रही है अम्मी?
1: ना कोसूं तो क्या करूं मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था कि मेरे भाई का लड़का ही ऐसा करेगा।
0: आखिर हुआ क्या है अम्मी?
1: ये तलाकनामा आया है।
0: तलाकनामा?
1: हाँ तलाकनामा मुश्ताक ने भेजा है।
0: क्या? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता अम्मी।
1: नहीं कर सकता? मुश्ताक ने ऐसा ही किया है, उसने तलाकनामे पर दस्तखत भी किए हैं।
0: नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता।

0: अरे पाता, ये क्या हो रहा है? सारा क्यों रो रही है?
1: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है।
0: क्या मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है?
1: हाँ, अभी एक आदमी मुश्ताक का तलाक नामा लेकर आया था, जिस पर मुश्ताक के दस्तखत भी हैं।
0: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ, करीम व फजी से बात करनी होगी।
1: अरे अब कोई फायदा नहीं है, मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया है, अब उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं, समझे?
0: अरे कोई इतनी आसानी से तलाक कैसे दे देगा? मैं बात करूंगा, मुश्ताक से पूछूंगा कि उसने सारे को तलाक क्यों दिया।
1: खबरदार जो वहां गए, जिसने सारे को बदनाम किया उसके दहलीज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: फाता, अगर कहीं गलती है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, पर हमें पता तो चले कि तलाक देने की वजह क्या है।
1: अरे वजह जो भी हो, तलाक नामा भेजने के बाद हमारा मुश्ताक से कोई रिश्ता नहीं है।
2: मुश्ताक,
0: सारे सारे बेहोश हो गई। फाता, पानी लाओ, उठाओ इसे।
1: अभी लाती हूँ।
0: अरे जल्दी करो।

0: अरे अरे सुनो भाई, सुनो सुनो।
1: हाँ
0: अरे कुछ कुछ बातें करनी हैं, बहुत जरूरी।
1: कहो फाता, क्या काम पड़ गया?
0: अरे भाई एक लड़का ढूंढना है।
1: लड़का किसके लिए?
0: अपनी सारे के लिए।
1: सारे के लिए?
0: अरे हाँ, मुश्ताक ने तो सारे को तलाक दे दिया है ना, अब उसका दूसरा निकाह करूंगी।
1: फाता, जो लोग सारे को जानते हैं वो उससे निकाह करेंगे नहीं, सो लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
0: या खुदा, मुश्किल क्या है, सारे को एक बार जो देख ले वो निकाह से इनकार नहीं कर सकता।
1: हाँ वो तो है, लेकिन सारे के लिए कैसा लड़का चाहिए?
0: देख, लड़का ऐसा हो
1: हाँ?
0: जो अच्छा खाता कमाता हो, और अगर वो घर जमाई भी बनकर रहे तो मैं अपना घर उसे बड़ी खुशी से दे सकती हूँ।
1: देखता हूँ, अगर ऐसा लड़का मिलता है तो मैं बताता हूँ।
0: लेकिन भैया ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। अच्छा अब तू जा।
1: जी जाता हूँ, अगर कोई बात बनी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज बेटा।
2: फाता, ये आदमी क्यों आया था?
0: काम था।
2: उस आदमी से क्या काम पड़ गया तुम्हें?
0: अरे सारे के लिए लड़का ढूंढने को कहा है।
2: फाता, तू ये क्या कर रही है?
0: ओफो, अपनी सारे के लिए लड़का देख रही हूँ, और उसके लिए भी यही ठीक होगा, शादी करके अपने घर चली जाए।
2: फाता, अभी अभी उस बेचारी को ये सदमा लगा है और तू उसके लिए एक लड़का देख रही है?
0: या खुदा, उसके भले के लिए ही कर रही हूँ। मुश्ताक और उसके घर वालों को मैं दिखा दूंगी कि मेरी लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है।
2: अरे फाता, ये समय सारे को सहारा देने का है और तू उसे एक और सदमा देना चाहती है।
0: मैं सारे को रानी बनाना चाहती हूँ।
2: फाता, जमीन पर रह और जमीन की सोच, आसमानों के ख्वाब पूरे नहीं होते। बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी और उसका सदमा वो अभी झेल भी नहीं पाई है, और तुम उसके लिए?
0: अरे बंद करो ये अपनी काली जुबान, जब देखो तो बुरा ही सोचोगे। अरे कभी तो अच्छा बोला करो।
2: फाता,
0: एक बात सुन लो मेरी, मैं सारे की शादी करूंगी, और अगर तुम सारे की खुशी चाहते हो तो चुपचाप सिर्फ देखते रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
2: फाता, तुम सारे के साथ ज्यादती कर रही हो, तुम माँ होकर उसके भले के नाम पर तुम पाप कर रही हो। मुझे दुख है कि तुम माँ होकर उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही हो।
0: बेटी की फिक्र है लेकिन तुम्हें नहीं। इंशाल्लाह अब मैं सारे के लिए ऐसा लड़का पसंद करूंगी जो खूब दौलत कमाता हो और सारे से मोहब्बत करे, साथ ही हमारी भी मदद कर सके।
2: वादा, दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी इन बातों से। अरे बाप हूं मैं उसका, उसकी खुशी की फिक्र मुझे भी है, पर मैं तुम्हारी तरह मतलब फरोश नहीं हूं। जो अपने सुख के लिए बेटी का रिश्ता किसी पैसे वाले को दे दूं।
0: अम्मा चुप करो, या खुदा आज तक कोई काम मुबारक तरीके से करने दिया है मुझे? और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो जाकर रहो उस चौकीदारी कोठी में। मैं तुमसे पूछने नहीं जाऊंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: अरे फाता, तुम हमें सुकून से जीने दोगी या नहीं, या अपनी इन्हीं करतूतों से हमें परेशान करती रहोगी? अरे कभी तो चैन की जिंदगी बसर करने दो।
0: अम्मा मियां, चैन की जिंदगी बसर करने के लिए तो ढेर सारे पैसे।
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां का छठवां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर लिखे एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रूपये था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय सदानीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे और वियतनाम के दनांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी को आसमान की तरफ ताकने

की आदत हो गई है ना, मन में बस एक ही ख्याल चलता है कि कब घने बादल घिरें और कब बारिश की पहली फुहार इस तपती जमीन को भिगोए। दोस्तों, मौसम के इसी सुहाने इंतजार के बीच आज जून

साथ चर्चा करेंगे डिजिटल जीवन शैली और इसके बीच हमारे स्वास्थ्य विषय पर। आइए आज के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस रिश्ते की जिससे हमारा वजूद है। एक पिता की उंगली पकड़कर ही हम दुनिया को देखना सीखते हैं। पिता का संघर्ष और उनका अनुशासन ही हमें जीवन की कठिन डगर पर सीधे खड़े रहने का संबल देता है। कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे वैश्विक अभिभावक दिवस पर उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मैं ऐसा ही हूँ से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये बेहद प्यारा और आत्मीय गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म मैं ऐसा ही हूँ से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत पापा मेरे पापा। गीतकार थे समीर और संगीत निर्देशन था हिमेश रेशमिया का। दोस्तों इस गीत के बोल सीधे दिल को छू जाते हैं। सचमुच पिता का साया जीवन की हर धूप में एक ठंडी छाव की तरह होता है। साथियों आज पूरी दुनिया में वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक अभिभावक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसी वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करना है और बच्चों के पालन पोषण में उनके योगदान त्याग और समर्पण को याद करना है। माता पिता बच्चों के प्रथम शिक्षक मार्गदर्शक और संरक्षक होते हैं। वे बच्चों को प्रेम सुरक्षा संस्कार और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करते हैं। दोस्तों यह दिवस हमें अनेक निस्वार्थ प्रेम और अथक प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। पिता के इस अनमोल साये के साथ माँ की ममता और उसके निस्वार्थ त्याग की भी तुलना नहीं की जा सकती। जब भी हम घर से दूर होते हैं तो माँ की बातें ही हमारा संबल बनती हैं। आइए सुनते हैं फिल्म नीरजा से सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये बेहद भावुक कर देने वाला गीत।

फिल्म नीजा से। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत निर्देशन था विशाल खुराना का। दोस्तों, माँ के स्नेह की छांव और बचपन का वो दुलार हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है। माँ के इसी निस्वार्थ स्नेह और जीवनदायी पोषण से जुड़ा है हमारा आज का अगला पड़ाव, जो सीधे हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती से वास्ता रखता है। 201 जून वैश्विक अभिभावक दिवस के साथ साथ पूरी दुनिया में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि हम सब अपनी सेहत में दूध के महत्व को समझ सकें। दोस्तों, हमारी संस्कृति में, हमारे आहार में दूध का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है, परंतु आधुनिकता के इस दौर में हमारी आदतें कुछ बदल सी गई हैं। याद कीजिए बचपन के वो दिन जब माँ ममता के साथ दूध का ग्लास थमाने के लिए हमारे पीछे भागा करती थी। आज जब हम समझदार और आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो विडंबना देखिए कि हमने उसी जीवनदायी और संपूर्ण आहार को अपने दैनिक जीवन से अनजाने में ही दूर कर दिया है। आजकल हम युवाओं के बीच चाय, कॉफ़ी, तरह तरह के फ्लेवर ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें लगता है कि देर रात तक जागकर पढ़ाई करनी हो या ऑफिस का काम करना हो तो कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स ही सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये कृत्रिम साधन हमारे दिमाग को कुछ देर के लिए तो एक्टिव कर देते हैं, मगर लंबे समय में ये हमारे पाचन तंत्र और हमारे सोने के पैटर्न को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दूध को हमारे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में एक संपूर्ण आहार यानी कंप्लीट फूड माना गया है। इसमें वो सब कुछ है जो हमारे शरीर को चाहिए, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम। आज बहुत कम उम्र में ही हम युवाओं में थकान होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, असमय बालों का सफ़ेद होना जैसी समस्याएं दिख रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि हम प्राकृतिक पोषण से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, रोज केवल एक ग्लास दूध हमारी इन बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है। विशेष रूप से रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पीना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें गहरी और सुकून भरी नींद देता है। तो आज इस विश्व दुग्ध दिवस पर हमें ये समझना चाहिए कि विज्ञापनों के बहकावे में आकर किसी भी फैशनेबल ड्रिंक को अपनाने से बेहतर है कि हम अपने पारंपरिक और शुद्ध पोषण की तरफ वापस लौटें, क्योंकि दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सकता है। साथियों, हमारी सकारात्मक सोच और हमारे भीतरी स्वास्थ्य का सबसे सीधा असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। जब मन में उमंग हो और विचार शुद्ध हो तो आंखों की सजीवता देखते ही बनती है। आंखें सचमुच हृदय का वो द्वार है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। आइए सुरों के सफर को एक ऐसी रचना से जोड़ते हैं जो सीधे रूह को छू लेती है। सुनते हैं फिल्म माय नेम इज खान से शफकत अमानत अली की आवाज में यह गीत, तेरे नैना।

दोस्तों आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली की आवाज़ में गीत तेरे नैना, जिसमें संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का। इस मधुर गीत का सुकून सचमुच मन को शांत करता है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हमारे स्वास्थ्य और हमारी आंखों के सुकून के सामने एक चुनौती खड़ी है। दोस्तों शरीर पोषण की बात तब तक अधूरी है जब तक हम अपनी रोज़ की आदतों पर बात ना करें। आइए अब रुख करते हैं उस विषय की ओर जो सीधे तौर पर हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी डिजिटल जीवन शैली। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी की ऑक्सीजन बन चुके हैं। सुबह खुलते ही हमारा हाथ सबसे पहले फ़ोन ढूंढता है और रात को सोते समय आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन होती है। पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, काम वर्क फ्रॉम होम से हो रहा है, दोस्तों से बातचीत मैसेजेस पर हो रही है और मनोरंजन के लिए भी हमारे पास ढेरों ऐप्स हैं। तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान और तेज़ बना दिया है, इस बात में तो कोई राय नहीं, लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अति उपयोग ने हमारे स्वास्थ्य के सामने कुछ बहुत गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लगातार कई घंटों तक लैपटॉप पर काम करने और मोबाइल देखने के बाद आपकी आंखों में जलन होने लगती है या सिर भारी हो जाता है? चिकित्सा विज्ञान में इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। इसी तरह जब हम लगातार अपनी गर्दन झुकाकर फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे डॉक्टर अब टेक्स्ट नेक कहने लगे हैं। इसके कारण बहुत कम उम्र के युवाओं में भी गर्दन और पीठ के दर्द की शिकायतें आम होती जा रही हैं। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य तो एक तरफ है, लेकिन इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर और भी ज़्यादा गहरा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें, उनकी यात्राओं की वीडियो देखकर हम अनजाने में ही अपनी ज़िंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब लोग बहुत खुश हैं, सिर्फ हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं। इस भावना को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है, जो हमारे भीतर एक अनजाना तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा करती है। लेकिन साथ ही इस आभासी चमक दमक के कारण खुद को

उदास या निराश करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ किसी के जीवन का पूरा सच नहीं, बल्कि सिर्फ एक चुनिंदा और सजाया हुआ पल होती है। कैमरे के पीछे हर इंसान के अपने संघर्ष और अपनी चुनौतियाँ होती हैं। इसीलिए किसी और की रील्स को देखकर अपनी रियल ज़िंदगी को कमतर आंकना बिल्कुल सही नहीं है। आपकी जीवन यात्रा अनूठी है और आपकी रफ्तार आपकी अपनी है। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी स्क्रीन को मत सौंपिए, क्योंकि आपका वास्तविक जीवन इस वर्चुअल दुनिया से कई ज़्यादा सुंदर और मूल्यवान है। लेकिन साथियों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें तकनीक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज के समय में तकनीक से दूर होना व्यवहारिक नहीं है। हमें बस एक चीज़ सीखनी है और वो है संतुलन। तकनीक हमारी सुविधा के लिए बनी है, हमें तकनीक का गुलाम नहीं बनना है। इस संतुलन को हम अपनी दिनचर्या में कुछ बहुत ही आसान और व्यवहारिक नियमों से शामिल कर सकते हैं। जैसे कि पहला नियम है 20-20-20 का नियम। जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल पर लगातार काम कर रहे हों, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर रखी किसी भी प्राकृतिक चीज़ या दीवार को देखें। इससे हमारी आंखों की मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है। दूसरा नियम है नो स्क्रीन जोन बनाना। अपने घर में कुछ जगह और कुछ समय ऐसा तय कीजिए जहां मोबाइल पूरी तरह वर्जित हो। जैसे भोजन करते समय फ़ोन बिल्कुल दूर होना चाहिए। जब हम फ़ोन देखते हुए खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर नहीं होता, जिससे हमारे शरीर को उसका पूरा पोषण नहीं मिल पाता। तीसरा और सबसे जादुई नियम है डिजिटल सूर्यास्त, डिजिटल सनसेट। रात को सोने के समय से कम आधा या एक घंटा पहले अपने फ़ोन और लैपटॉप को खुद से दूर कर दीजिए। फ़ोन से निकलने वाली जो कृत्रिम रोशनी है वो हमारे दिमाग को सोने का सिग्नल नहीं देती, जिससे हमारी नींद अधूरी रह जाती है। जब आप सोने से पहले फ़ोन से दूरी बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद कितनी गहरी और सुकून भरी हो गई है। साथियों, सोशल मीडिया पर हमारे कितने फॉलोवर्स हैं या हमारी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं, यह बात से कई कम महत्वपूर्ण है असल ज़िंदगी में हमारे चेहरे पर कितनी मुस्कान है और हमारे अपनों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा है। वर्चुअल दुनिया के इस मानसिक दबाव से थोड़ा विराम लेकर जब हम वास्तविक दुनिया की सादगी को अपनाते हैं ना दोस्तों, तो दिल अपने आप मुस्कुरा उठता है। आखिर यह जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जिसका हमें हर पल आभार मानना चाहिए। आइए सुनते हैं हम युवाओं के दिलों में जीवन के प्रति एक नया उत्साह जगाता फिल्म डियर जिंदगी से ये बेहद खूबसूरत और सकारात्मक गीत लव यू जिंदगी।

दोस्तों कितना खूबसूरत है ना ये एहसास, जब हम इस प्यारे से जीवन का आभार मानते हैं तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। अपनी सेहत, अपने विचारों, अपनी जीवन शैली से प्यार करना ही वास्तविक जीवन है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आइए जानते हैं आज की रोजगार सूचना। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। 10वीं कक्षा के साथ ITI प्रमाण पत्र या संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा अनिवार्य है। आवेदन 15 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून है। और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता को इजाजत। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पर युवाओं की तरंग, युवाओं की आवाज़, कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही, जो कि पार्श्व गायिका रही हैं। आज फिल्म संगीत में उन्हीं के गाए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे।

आरंभ में अप्रैल फुल फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। हसत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है। कार्यक्रम में आज सुमन कल्याणपुर के गाए हुए कुछ गीत आपको सुनवाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे बात एक रात की फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। मजरू के बोल थे और धुन थी एस डी बर्मन की।
1: हमें

रोशन के संगीत निर्देशन में साहिर का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं। दिल ही तो है फिल्म का ये गीत, गायिका सुमन कल्याणपुर।

श्रोताओं बता दें आज सुमन कल्याणपुर इस फ़ानी दुनिया को अलविदा करके कहकर चली गई हैं। वो फिल्म संगीत की एक जानी मानी गायिका थी और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। संगीत गायिका जो कि फिल्म स्टार्स के लिए गाया करती थी, आज वो एक खुद सितारा बनकर रह गई हैं। आज उन्हीं के गाए कुछ पार्श्वगीत हमने आज फिल्म संगीत में आपको सुनवाए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय हो चुका है एक अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों

0: नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला ये अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय सदानीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे। और राजधानी भोपाल में मौसम सुहाना हो गया है। यहां तेज हवाओं के साथ बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने आज झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर

0: प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोल

0: नहीं होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमरीका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोस में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोस में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी।
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी।
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल तो अब आज का अंतिम प्रश्न ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम सम

0: गुणवत्तामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक
1: जी।
0: और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
1: जी।
0: है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके। यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल,

0: हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें। और
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। साहिब फिल्म का गीत है, बप्पी लहरी और एस जानकी ने इसे गाया है, अनजान ने लिखा, बप्पी लहरी की धुन।

0: डिस्को डांसर फिल्म का ये गीत था बप्पी लहरी का गाया हुआ। अनजान ने गीत के बोल लिखे थे और धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल, मोदी सरकार के निर्णयों ने बदली देश की तस्वीर, आम लोगों की तकदीर। आलेख है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे कर रही है। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने खुद को सिर्फ सत्ता संभालने तक सीमित न रखकर योजनाओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए देश की पूरी तस्वीर बदलने का काम किया है। इन नीतिगत बदलावों ने सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, जिससे लास्ट माइल डिलीवरी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की व्यवस्था बेहद मजबूत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एवं अन्य धार्मिक कार्यों में सरकार की सहभागिता से जनता में नई धार्मिक चेतना का संचार हुआ है। वैसे तो सरकार के सभी कार्यों का जिक्र करना असंभव है, लेकिन देश और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले प्रमुख क्षेत्रों और योजनाओं का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका सशक्तिकरण है। लंबे समय तक महिलाओं को केवल एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें नीतियों और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाली एक निर्णायक मतदाता बनकर उभरी हैं। महिलाओं को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही सुरक्षित मातृत्व अभियान और मातृवंदन योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं की देखभाल की गई और मातृत्व अवकाश की अवधि में वृद्धि की गई। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को समाज में एक नया अधिकार और सम्मान दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके प्रति नजरिए को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सरकार ने केवल सामाजिक सुधारों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि युवाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कई योजनाएं लागू की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिए गए। चाय की दुकान, बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे छोटे व्यवसाय करने वालों को इससे बड़ा सहारा मिला और युवा नौकरी ढूंढने वालों से नौकरी देने वाले बन गए। वहीं टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और फंडिंग सपोर्ट के दम पर आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां करोड़ों युवा अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम की पहल से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिला। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में भारी निवेश आया, जिससे भारत आज दुनिया का एक प्रमुख मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बनकर उभरा है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोरोना महामारी के संकट के बाद रेहड़ी पटरी और पटरी दुकानदारों को अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए बिना गारंटी का लोन दिया गया, जो बेहद मददगार साबित हुआ। सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कई जन कल्याणकारी मोर्चों पर काम किया, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के जीरो बैंक बैलेंस खाते खोले गए, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है। कैंसर और हार्ट जैसी गंभीर सर्जरी के खर्च से बचकर लाखों परिवार कर्जदार होने से बच गए, जिससे मृत्यु दर में कमी आई और लोगों का जीवन खुशहाल हुआ। वहीं स्वच्छ भारत मिशन एक सफाई अभियान से बढ़कर सामाजिक आंदोलन बन गया। देश भर में करोड़ों शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ। शहरों के बीच स्वच्छता की होड़ शुरू हुई और रसूखदार लोगों से लेकर आम जनता तक में जागरूकता आई। जल जीवन मिशन अभियान से महिलाओं को पानी के लिए करने वाली कड़ी मेहनत से मुक्ति मिली और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में भी भारी कमी आई। वहीं पीएम आवास योजना ने बेघर लोगों और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के मकान का मालिक बनाया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए हर साल उनके खाते में 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के भीतर सरकारी सेवाओं और भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और तेज बना दिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत को डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में वैश्विक लीडर बना दिया है। आज रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान ले रहे हैं। इन 12 वर्षों का सफर ये साफ करता है कि नीतियां अगर सही नीयत से लागू की जाएं, तो वे देश की तकदीर बदल सकती हैं। आजकल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमाज। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है गेहूं उपार्जन के संबंध में। हाल ही में संपन्न हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी कर उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया है।
1: मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूँ खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूँ खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मेट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है, अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने ये गेहूँ खरीदी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे बताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का भुगतान प्रेषित किया गया है। इसका मतलब हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं हमने अपने किसानों से खरीदा गया है।
0: हमारी दूसरी खबर विदिशा से है, जहां रबी विपणन वर्ष 2026-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर जिले में 68,200 किसानों से 651,836 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पेश है विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश के कृषि प्रधान विदिशा जिले में रबी विपणन वर्ष 26-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थित रूप से खरीदी की गई है। जिले में 68,200 किसानों में से 651,836 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा उपार्जन कार्य की निरंतर समीक्षा करने से किसानों को सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था मिली है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुबाई ने बताया कि गेहूं विक्रय हेतु जिले में कुल पंजीकृत किसानों में से 74,621 किसानों अर्थात 90% किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय किया है। 28 मई तक गेहूं की खरीदी होने के पश्चात उपार्जित गेहूं के परिवहन का कार्य अभी भी जारी है। अब तक खरीदे गए कुल गेहूं में से 577,598 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है, जो कुल खरीदी का लगभग 88% है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1,470 करोड़ रुपए ईपीओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिले में बारदाने की आपूर्ति निरंतर और पर्याप्त होने से उपार्जन केंद्रों से गेहूं का परिवहन आसान हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है शिवपुरी से, जहां किसान, ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, खाना और सस्ती सुविधा देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौजूदगी और पड़ोसी जिले शिवपुर में चीतों के आने के बाद जिले में होम स्टे टूरिज्म को पंख लग गए हैं। शिवपुरी जिले के किसान, ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, देसी खाना और सस्ती सुविधाएं देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। फिलहाल जिले में 4 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। इनमें हाथौद ग्राम में चल रहा होम स्टे पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन होम स्टे में रुकते हैं। इसके बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के साथ साथ सिंधिया घराने की ऐतिहासिक छतरियां, भदिया कुंड और भूरखो जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जिले में कई होटल पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब होम स्टे का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ग्राम हाथौद में स्थित फार्म स्टे बैरागढ़ लिविंग के संचालक जसमीत ग्रेवाल ने बताया कि हमारे यहाँ पर कई देसी विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देसी स्थानीय व्यंजन जैविक खेती से तैयार अनाज व सब्जियों से तैयार किए जाते हैं। जिला पर्यटन प्रबंधक देव सोनी ने बताया कि शिवपुरी में होम स्टे को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद पर्यटकों को होटल के मुकाबले कम रेट में बेहतर और प्रामाणिक सुविधाएं देना है। उन्होंने बताया कि साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। इन होम स्टे के संचालन से अब युवाओं को गाइड, रसोईया और हाउस कीपिंग का रोजगार भी मिल रहा है। शिवपुरी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और होम स्टे इस दिशा में नया अध्याय लिख रहे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर है सीधी जिले से, जहां जिले के सेवारत सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक नजीर पेश की है। ज्यादा जानकारी दे रहे सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: देश की सुरक्षा में निरंतर समर्पित सैनिक सीमाओं पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अक्सर अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। इन तमाम तथ्यों को लेकर जिला प्रशासन सीधी ने एक अभिनव पहल की है। हेलो सीधी, जय जवान एक समर्पित जिला स्तरीय सहायता एवं शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से सैनिक, उनके परिजन सीधे जिला प्रशासन विकास से संपर्क कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी इन उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 810-355-0045। व्हाट्सएप नंबर है 810-355-0045। आधिकारिक वेबसाइट cd.nic.in। हेलो सीधी जय जवान केवल शिकायत निवारण परियोजना नहीं, बल्कि सैनिकों के सम्मान, त्वरित सेवा वितरण एवं संवेदनशील प्रशासन का एक अभिनव मॉडल है। आने वाले समय में जिला प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर विकास की यह सोच दर्शाती है कि तकनीकी जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के समन्वय से विशेष वर्गों के लिए प्रभावी और सम्मानजनक सेवा तंत्र विकसित कर सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
0: हम चलते हैं सीहोर जिले की तरफ, जहां इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत किया गया नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
5: सीहोर जिले में इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले का नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के वातावरण में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर बाला गुरु के और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्चना यादव के निर्देश पर जिले में नवाचार के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। संकुल अंतर्गत ऐसे शाला त्यागी बच्चे जो किन्हीं कारणों के चलते शाला में प्रवेश से वंचित रह गए हैं, अक्षर साथी के माध्यम से शाला में प्रवेश संबंधी कार्रवाई पूर्ण कराई जा रही है। इससे अक्षर साथी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन बच्चों के गैप्स को दूर करने के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही है। जिले में गृह संपर्क अभियान के माध्यम से बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि शाला खुलते ही ये शाला में नियमित रूप से आना प्रारंभ करें एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सकें। जिले में सामाजिक चेतना केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों एवं अपने साथियों को ड्रॉप आउट बच्चों को शाला में प्रवेश हेतु प्रेरित किया जा रहा है। सरकारी शिक्षकों के द्वारा घर घर जाकर माताओं से सरकारी शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रयासों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को शाला से जोड़ना, शाला की पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों और युवक युवाओं को शिक्षा से जोड़ने प्रयास लगातार किए जा रहा है। इस बारे में जिले के DPC श्री RR उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि
6: जिले में चलाया जा रहा अभियान 2.0 शिक्षा के संबंध में बताना चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय एवं CEO मैडम के मार्गदर्शन में जो शिक्षा से वंचित विद्यार्थी कक्षा में अध्ययनरत नहीं है उन बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जो कि जिले के प्रत्येक विकास खंड में डाइट एवं जनपद शिक्षा केंद्र के टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 100% हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे।
5: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं शहडोल जिले की तरफ, जहाँ प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत संसाधन युक्त बनाने के लिए शिक्षा विभाग 51 स्कूलों का विलय कर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सरकारी संस्थानों के सही उपयोग करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
7: शहडोल जिले में ऐसे 51 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां छात्र संख्या 10 से भी कम है। इन स्कूलों को बंद कर यहां पढ़ रहे बच्चों को नजदीक के ही शासकीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। जिला परियोजना समन्वयक अमरनाथ सिंह ने बताया कि विकास खंडवार स्कूलों को चिन्हित किया गया है। शासन स्तर से निर्देश मिलते ही छात्र व स्कूल सामग्री को नजदीक के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। चिन्हित किए गए 51 प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या नाममात्र की है, जबकि हर स्कूल में 1 से 2 शिक्षक तैनात हैं। कम छात्र संख्या होने के बावजूद इन स्कूलों के संचालन, शिक्षकों का वेतन व रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। सबसे अधिक 15 स्कूल गोपारू विकास खंड में है, जबकि सुहागपुर और व्यवहारी विकास खंड में 11 प्राथमिक स्कूल है। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूलों के विलय से बच्चों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा, बल्कि उन्हें अच्छा शैक्षणिक माहौल और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है शाजापुर जिले से, जहां गेहूं उपार्जन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 28 मई को संपन्न हुई, जिसमें जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए उज्जैन संभाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पारशर।
8: समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड गेहूं खरीदी शाजापुर ने उज्जैन संभाग में हासिल किया दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से संचालित समर्थन मूल्य खरीदी अभियान के तहत शाजापुर जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। 9 अप्रैल से 28 मई तक चले इस अभियान में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा गया। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि भी बढ़ाई थी, जिससे कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे। शाजापुर कलेक्टर रिजु बापना के मार्गदर्शन में जिले के 93 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी, तोल, परिवहन तथा भीषण गर्मी के बीच किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था की गई। जिले में इस वर्ष 4,27,417 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। उत्कृष्ट प्रबंधन और किसानों की सक्रिय भागीदारी के चलते शाजापुर ने गेहूं उपार्जन में उज्जैन संभाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला आपूर्ति अधिकारी रिजू बापना के अनुसार खरीदी के साथ साथ भुगतान प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी गई। अब तक 67,000 से अधिक किसानों को 1,004 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। समय पर भुगतान और सुव्यवस्थित खरीदी व्यवस्था ने किसानों का विश्वास और मजबूत किया है। शासन और किसान हितैषी नीतियां, जिला प्रशासन के सतत निगरानी तथा उपार्जन केंद्रों पर किए गए समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिले में इस वर्ष गेहूं उपार्जन अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजीत पारशर की रिपोर्ट।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधि

और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले आज की सभा के शेष प्रसारण की जानकारी। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा में आज का आकर्षण होगा लोकरंग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण का प्रसारण करेंगे। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद आपकी फरमाइश कार्यक्रम में रात्रि 10:00 पूरी करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया ताल बागेश्वरी आप सुनेंगे। ये थी जानकारी आज के इस प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 7:20 पर दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल होगा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा सुनिएगा सुबह 8:30 पर। आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरंजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा में कव्वाली गायन के संपादित अंश आप सुनिएगा सुबह 9:00। कलाकार होंगे मुनव्वर मासूम और साथी। सुबह 9:30 पर परिचर्चा होगी हिंदी में आत्मकथा लेखन। प्रतिभागी होंगे शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा। जिले की चिट्ठी अपने निर्धारित समय सुबह 10:00 प्रसारित होगी। कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे गीत सागर प्रोग्राम में सुबह 10:05 पर प्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनिएगा रामदास मुंगरे का ख्याल गायन, राग होगा भैरव। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में 1 जून 2026 को ग्राम रामसिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। अब विवरण आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण का। कल दिन में 11:00 फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे का प्रसारण होगा। आपकी फरमाइश मध्याह्न 12:00 और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 7वां भाग आप सुनेंगे 12:30 पर। महिला कार्यक्रम दिन में 1:00 प्रसारित होगा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित करेंगे। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण का प्रसारण करेंगे रात्रि 8:00। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आबशारे गजल आपकी नजर करेंगे रात 9:30 पर। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में रामदास मुगरे का ख्याल गायन होगा, राग होगा गौड़ मल्हार। ये थी जानकारी आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपको पुनः याद दिला दें आकाशवाणी प्रसारण के

0: स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरंजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में कव्वाली गायन के संपादित अंश आप सुनिएगा सुबह 9 बजे। कलाकार होंगे मुनव्वर मासूम और साथी, तो कल सुनिएगा सुबह 9 बजे। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नौ निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
2: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके। और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए।

0: होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्यप्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशील देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगर मालवा जिले में आज दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडोना में आंधी और गरज चमक के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
6: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को वर्षा बहन की राम राम। भाइयों बहनों कैसे हैं आप? हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सब अच्छे होंगे। भाइयों बहनों अपन तो देख ही रहे हैं कि बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन कब थोड़ी सी बारिश होवे से, कई जगहों पर बारिश होवे से ठंडक सी हो गई है, थोड़ी सी हमें गर्मी से राहत मिल गई है। लेकिन भाइयों बहनों अभी भी ध्यान रखें, तरल पदार्थ लेते रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम तो है ही, और हमारे किसान भैयान को तो पशुओं को भी ध्यान रखना होता है। तो भैया पशुओं को भी ध्यान रखें, उन्हें भी साफ स्वच्छ पानी पीवे को दें, और उन्हें छायादार स्थान पर बांधें, और उनके आसपास बारिश को पानी, मक्खी मच्छर आदि ये सब इकट्ठा ना होने दें, ताकि वो भी बीमारी से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। और भाइयों बहनों अब सुनते हैं जे संदेश।

भाइयों बहनों, आज है 1 जून। आज विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अपन तो देख रहते ही हैं कि सभी लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं, कुछ नाश्ते के साथ, कुछ नाश्ते के बाद चाय पीते हैं, सुबह पीते हैं, शाम को पीते हैं, लेकिन पीते ज़रूर हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, बड़े हों, दूध सबको लगता है। छोटे बच्चों को तो विशेषता रोज़ ही हम दिन में 2 बार दूध पिलाते हैं, 2 गिलास दूध, एक बार सुबह, एक बार शाम को। और कहो भी जात है कि दूध संपूर्ण आहार होते हैं। दूध से ही दही बनत है और दही से लस्सी, छाछ, पनीर, ये सब हम बड़े चाव से खाते हैं। और दूध से कई तरह की मिठाइयाँ भी बनत हैं, छेना बनत है। दूध हमारे दैनिक आहार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, और यही वजह है कि आज विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है, ताकि सभी लोगों को इस दिवस के महत्व के बारे में जागरूक कर सकें। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इसकी स्थापना हुई थी 2001 से। प्रत्येक वर्ष 1 जून को ये दिवस मनाया जाता है। तो भाइयों बहनों, ये दिवस मनावे को उद्देश्य यही है कि जो भी दूध डेयरी क्षेत्र हैं, तो डेयरी क्षेत्र से जुड़ी सभी गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सके, सबको ध्यान आकर्षित हो सके, और ताकि डेयरी उद्योग और इससे उत्पाद जो हमें प्राप्त होते हैं वे सही ढंग से हों, सही

0: मात्रा में हमें प्राप्त हों, और डेयरी क्षेत्र में जैसे दुग्ध उत्पादन और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको भी जे दिवस के माध्यम से मान्यता दी जाती है। और इस दिवस पर महिला किसानों को पूरा सम्मान मिले इस बात पर जोर दिया जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं अपने भारत देश में विश्व को अपा जो भारत देश है विश्व को सबसे बड़ो दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में करीब 25-30% तक की हिस्सेदारी रखत है। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में होते हैं। तो भाइयों बहनों, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में महिलाएं जो हैं एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, तो इस सब का महत्व हम जान सकें, सीख सकें, इसी वजह से विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में जो दुग्ध दिवस है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, और जो कि भारत की जो हमारे श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भाइयों बहनों, आइए जानते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में। अपन सुनते हैं जी वार्ता, जानकारी दे रही हैं कुसुम जाटव।
1: बच्चों, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति विश्व के सबसे विशालतम विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के लिए इसे श्वेत क्रांति नाम दिया गया है। सन 1949 में डॉक्टर कुरियन ने स्वेच्छापूर्वक अपनी सरकारी नौकरी को त्याग कर केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ से जुड़ गए, जो बाद में बहुत बड़े ब्रांड के रूप में विकसित हुआ। तब से ही डॉक्टर कुरियन ने इस संस्था को देश का सबसे सफल संगठन बनाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। इसकी सफलता को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण किया गया। उन्होंने डॉक्टर कुरियन की उल्लेखनीय और ओजस्वी नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना। उस समय सबसे बड़ी समस्या धन एकत्रित करने की थी। इसके लिए डॉक्टर कुरियन ने वर्ल्ड बैंक को राजी करने की कोशिश की और बिना किसी शर्त के उधार पाना चाहा। जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष 1969 में भारत दर्शन पर आए थे, डॉक्टर कुरियन ने उनसे कहा था, आप मुझे धन दीजिए और उसके बारे में भूल जाइए। कुछ दिन बाद वर्ल्ड बैंक ने उनके ऋण को स्वीकृति दे दी। यह मदद किसी ऑपरेशन का हिस्सा था, ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर कुरियन ने और भी कई कदम उठाए, जैसे दुग्ध पाउडर बनाना, कई और प्रकार के डेयरी उत्पाद को निकालना, मवेशी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और टीके लगवाना आदि। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में पूरा किया गया। इस 3 टीयर मॉडल ने देश में दुग्ध क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध विकास दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इन्हें श्वेत क्रांति का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय डेयरी संघ के द्वारा की गई पहल के बाद ही 2014 से भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 2022 के मुताबिक भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादक में लगभग 23% का योगदान देता है। इतना ही नहीं, डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है। 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार इससे प्राप्त होता है। डॉक्टर कुरियन ने चार्ज की गई कीमतों को तय करने के

0: लिए दिल्ली दुग्ध योजना को व्यवस्थित करने में मदद की। इन्हें डेयरी उत्पाद के औद्योगिकरण और ब्रांड की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इन्होंने लगभग 30 संस्थाओं की स्थापना की। उस वक्त सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह प्रमुख दुग्ध उत्पादक राष्ट्रों में गाय के बजाय भैंस के दूध का पाउडर उपलब्ध कराया था। इसके बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इन्हें 1965 में डेयरी विकास बोर्ड का संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया। धीरे धीरे इन्हें सभी दूध उत्पादकों से सहयोग और एकजुटता के विचार में ताकत का एहसास हुआ। एक बेहतर जीवन बनाने और वह हासिल करने के लिए उनके संसाधन जो वे अकेले कभी हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए आरंभिक कुछ प्रबुद्ध राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों के समर्थन से जिन्होंने उनके सहयोगात्मक मॉडल में खूबियां देखी, अपने सभी सहयोगियों के साथ ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हुए कुरियन के दोस्त और डेयरी विशेषज्ञ H.M. दलाया ने इस प्रक्रिया का आविष्कार किया, भैंस के दूध से दूध पाउडर और गाढ़ा दूध बनाना। यह अभूतपूर्व प्रयोग था। पशुपालन और डेयरी के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। युगों युगों तक किसानों ने अपने मवेशियों के साथ रहना सीख लिया है। मवेशी दूध देते हैं और दूध उत्पादकों के लिए किसान परिवार को एक कोष की आवश्यकता है। प्रोटीन और दूसरों को बिक्री के लिए गांव और बाहर आय के एक स्रोत के रूप में उन्हें आय का पूरक होना चाहिए। खेती पशुपालन में सुधार इस प्रकार कृषि का एक अभिन्न अंग बन गया। डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में एक सीरियाई ईसाई परिवार में कालीकट मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो अब केरल में वहां हुआ था। उनके पिता कोचीन केरल में एक सिविल सर्जन थे। साथ ही उन्होंने 1940 लॉयल कॉलेज मद्रास से भौतिक में स्नातक और मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वे 1946 में स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 1948 में भारत सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की सहायता से मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते थे। वर्गीज कुरियन ने बिलियन लीटर आइडियाज के लिए बहुत नाम कमाया था। डॉक्टर कुरियन के काम के कारण 1998 में भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक करने वाला देश बन गया था। भारत के सबसे प्रेरणादायक सामाजिक उद्यमी के रूप में वर्गीज कुरियन रहे। उन्होंने भारत की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। दूध की कमी आयात पर निर्भर राष्ट्र से लेकर विश्व का राष्ट्र बनने तक दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। उत्पादकों के पास अब आय का गारंटीशुदा नियमित स्रोत है। इस क्षेत्र में भारत ने न केवल आत्मनिर्भर बनना बल्कि ऑस्ट्रेलियाई चीन जैसे कई देशों के लिए निर्यातक भी हो गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को उनके कामों के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज और रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार तथा कार्नेजी वॉटलेटर वर्ल्ड पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था।
1: भाइयों बहनों, अभी अपन ने सुना वर्गीज कुरियन के बारे में। जानकारी दे रही थी श्रीमती कुसुम जाटव। और भाइयों बहनों, हमें आपके मनोरंजन को सुई ख्याल है, तो अब हम आपको सुनवा भी जा रहे हैं और अपने कार्यक्रम को समय भी हो गया है। आज है सोमवार, बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको सुनवा भी जा रहे हैं उर्मिला पांडे की आवाज़ में ये गीत।

भाइयों बहनों, अभी अपन ने सुना उर्मिला पांडे की आवाज़ में ये गीत, और गीत की फरमाइश करी थी ग्राम बिडौरा, तहसील सेवरा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर, मानवी गुर्जर, नैना गुर्जर, नंदिनी गुर्जर, इन सभी ने। और भाइयों, अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं ये गीत कृष्ण गोपाल दुबे की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है अमलतास अम्ब्रीन होम्स, कटारा, भोपाल, मध्य प्रदेश से योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय और कृष्णा भारतीय ने। और इसके साथ ही न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला, भोपाल, मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय और श्रीमती ललिता भाई भारतीय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, सुनिए ये गीत।

भाइयों बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। भैया बहनों, अपन तो देखते ही हैं कि आज के टाइम में हर आदमी को बीपी, शुगर, कोई भी बीमारी से ग्रसित है। सब इनको कछु ना कछु चिंता व्याधा है। तो ऐसे समय में आज आवश्यकता है कि हम योग को अपनाएं, योग के महत्व को समझें, योग करें और स्वस्थ रहें। योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अगर हम ध्यान लगाते हैं, अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं, योग प्राणायाम अपने अभ्यास में लाते हैं, तो हम निश्चित रूप से सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो भाइयों बहनों, जेई वजह से हर साल 21 जून को योग दिवस मनाओ जाते हैं और जे दिवस मनावे को उद्देश्य यही है कि सभी लोग योग के महत्व को समझें, योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें और सुखी जीवन जिएं। तो भाइयों बहनों, योग हमारे कहवे को तात्पर्य भी यही है कि आप सभी योग जरूर से अपनाएं। नियमित रूप से योग करवे से हमारी जो भी चिंता बाधाएं हैं, इनसे हमें काफ़ी हद तक राहत मिलत है। हम जो बीमारियां हैं, अपना जो भी बीपी, शुगर, ये सभी चीज़ें योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, ये सब हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो भाइयों, हम तो आपसे यही कहें, योग अपनाएं, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। और बहनों, अभी भाइयों, आप सुन रहे हैं बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते भाई, हम आपको सुनवावे जा रहे हैं निरंजन कुमार शर्मा की आवाज़ में ये हास्य गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावलिया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा अमिता और श्रीमती ललिता भाई भारतीय ने। तो भाइयों बहनों, सुनते हैं जी लोकगीत।

भाइयों बहनों, अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं जी गीत, और राजीव कुमार रावत की आवाज़ में इस और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू ने। तो भाइयों बहनों, सुनते हैं जी गीत।

0: भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। अगर आप भी अपनी पसंद का कोई लोकगीत सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 9425702768। तो भाइयों बहनों, जल्दी से लिख भेजिए अपनी फरमाइश और सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी। और भाइयों बहनों, अपन देख ही रहे हैं, अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है, अब कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है। तो आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेते हैं। राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश

0: Ujjwala Yojana is one such scheme which has really revolutionized, you know, if you can say, you know, the healthcare, the upliftment of the healthcare of the rural women. Now, how do you see this PM Ujjwala Yojana actually, you know, benefiting the rural women?
1: That's a very interesting thing that you have asked. And frankly speaking, when PM Ujjwala, which is basically supply of LPG cylinders to the places which were earlier using only firewood, so rural areas, semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies. And frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme. Because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised. The basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes, yeah,
0: absolutely. Shubham, Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala Yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को. क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में. ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज़ हैं खासकर जैसलमेर राजस्थान और गुजरात कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा जैसे आप पावर की बात कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए या पानी की बात कर लीजिए टॉयलेट्स की बात कर लीजिए ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है. चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है.

0: करता था।
1: जी
0: और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सॉर्ट एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: एब्सोल्युटली शुभमय। अदिति, टॉकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट्स, ऑफ कोर्स शुभमय आल्सो मेंशन्ड अबाउट यू नो द हेल्थ एस्पेक्ट। नाउ हेल्थ इज वन थिंग व्हिच जस्ट कैन नॉट बी ignored, that is one, and of course the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social well healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of you know, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now with the Ayushman Bharat scheme coming in, you know, it again revolutionized, you know, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now this in fact has turned out to be the world's largest government funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now how important this is, how significant is this?
0: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of cutting edge health services across the country. Earlier, what was happening is that for even a very small procedure or a small facility visit, people had to come all the way to AIIMS New Delhi, or in the north part of the country they had to go to PGI Chandigarh. In south they used to throng Jipmer Puducherry, you know. Yeah, these are institutes of excellence in health. Mm. Everybody would have to rush to these institutions because there was no healthcare available next door. See, the concept of healthcare delivery becomes important and successful if you take healthcare services where people are living. So the entire infrastructure under the Ayushman Bharat scheme was conceived around these pillars. The first thing was that you set up health and wellness centers, which are now known by the name of Arogya Mandir. Mm. Different states of the country have it. Some states which did not have it, for instance, West Bengal, where election has just ensured that BJP has won. So they are now going to roll out the Ayushman Bharat landscape there also. Mm. So there are two main pillars of the scheme that you mentioned. First is that you have the community health service through Arogya Mandirs, where you provide basic screening facilities for the community dwellers. Villagers will come there, and they will be able to screen themselves for even some of the major cancers. For example, the most common ones, you can get screenings for cancer of the cervix, for breast cancer, for, you know, these kind of cancers. You can get screening and basic facilities. Now, if a referral is found at that level and you are found to be in need of better healthcare delivery, so then you are referred to a higher facility, which could either be a district hospital, a community health center, or if there is a more complicated procedure to be done, then to an even better hospital. And as we know, under Ayushman Bharat, so many private hospitals, not only government hospitals, which are in the government system, have been empaneled. Mm. So now empanelment is being institutionalized. It is not something that can happen overnight. These institutional mechanisms will take years to get working smoothly. But at least a beginning has been made, and there is a lot of evidence available in the Ayushman system, which tells us that major surgeries, for example, knee transplants are happening, cancer care is happening, stents are being provided at a much lower cost. Then you also have a structure of Jan Aushadhi Kendras, where you have, you know, subsidized medicines available for the poor. So the attempt that the government is making is to ensure affordable healthcare delivery, quality healthcare delivery. Why was it done? It was done because there was a lot of study and research that indicated that people who have managed to beat poverty and come out of the poverty line are being pulled back in because of hefty expenditure, out-of-pocket expenditure on health costs. We all know, you know, how costly health can get. God forbid if a certain family has a cancer patient or two patients, we all know that the entire life savings of that person can go in that one treatment. Then you see kidney dialysis centers have been set up across the country. Free dialysis are being provided in government health system. So there's a whole infrastructure being laid down to ensure that the poor are not feeling challenged or debilitated because they have to pay so much from their pocket for health.
1: Correct. Aditi, health, of course, food. जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कहावत जो है, रोटी कपड़ा और मकान. नाउ द नीड फॉर हाउसिंग, अगेन यू नो, दिस इज अनदर वन थिंग विच अगेन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड. नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, बोथ द रूरल एंड द अर्बन, यू नो, द अर्बन पुअर एज वेल. नाउ दिस इज अनदर बिग थिंग विच इज रियली काइंड ऑफ, यू नो, द एंटायर, यू नो, द आइडिया, यू नो, ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स रादर, इज टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यू नो, विद इन सिटीजन, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ द रूरल पीपल एंड द अर्बन पुअर एज वेल. Rather across the spectrum. Now, PMAY, both rural and urban, how do you see this kind of revolutionizing, especially when we talk of PMAY Urban 2 also now launched, 2.0 also now launched. Now, this is something which is really phenomenal.
0: Yeah, I think like we discussed earlier, you know, the overall policy impetus of the government is basically to create a landscape where the poor not only come out of poverty, but they have a means of dignified living. For dignified living, housing is very important. You know, people are being helped to get access to affordable housing. Like you said, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen is particularly remarkable in the scale that it seeks to achieve. If you look at the sheer numbers, I think Grameen Yojana targets around 5 crore houses by the year 2029. And so far, the data suggests that almost, 3.90 crore houses have been sanctioned and nearly 3 crore have actually been completed and are being distributed through the state system. What is even more important is that these houses are going to people who do not own any immovable assets, like who do not own any property or any land or any house at all. And the system also now is artificial intelligence driven. There are a number of monitoring tools that have been deployed to ensure that the anomalies get detected in time, that only the very genuine beneficiaries get houses, and there's Aadhaar face authentication happening. And what is most important is geotagging of the structures is happening, structures that are being created. Everything is digitally driven. So what is important also is that there is seamless coverage being provided to the beneficiaries of PM Awas Yojana with other schemes of the government. Whoever comes into the system of PM Awas Yojana will automatically get linked to Swachh Bharat Mission, Grameen, Jal Jeevan Mission, Ujjwala Yojana, Surya Ghar Mission and Muft Bijli Yojana.
1: Correct.
0: So there's a seamless coordination and integration of the government system. All that has happened only because of the digital platforms that have been created for the purposes. There are portals where people can apply. Aadhaar is already there, like we discussed, the Jam Trinity is there.
1: Yes.
0: So everything is in place and now the foundation has been laid and now building blocks are being created.
1: True. Shubha, agar hum baat kare Pradhan Mantri ye Mudra Yojana ki, Mudra Yojana ek aisi yojana hai jahan ki humne dekha hai ki lagbhag abhi tak 57 crore se jyada लोन ये डिसबर्स किए जा चुके हैं और ये खास करके महिलाओं के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा एक सहारे का काम कर रहा है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहा है. वी ऑल नो दैट नो कंट्री, नो इकोनॉमी और नो सोसाइटी रादर कैन यू नो एडवांस विदाउट टेकिंग इनटू द लूप द अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ मुद्रा योजना, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 57 करोड़ प्लस लोन अभी तक डिसबर्स किया है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, खास करके महिलाओं के लिए अगर हम बात करें.
2: द इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इज यू नो अगेन समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच वी डिडंट एक्सपेक्ट अर्लियर. सो द वे टू पुट इट इन इज दैट दिस इज समथिंग, दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड अगेन टू हैपन एट अ लेटर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. दैट has begun to happen now. Why? Because Mudra Yojana essentially says that somebody who is able to take a loan for self, for entrepreneurship, should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. Now, typically, somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of sheer, out of because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, Posh, because of the fact that an ecosystem of support, partially again through the Jam Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the Mudra loan, as we can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujjwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubham. Diti, abhi Shubham ne self-employment ke baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 plus crore loan abhi tak disburs kiye ja chuke hain. Is baare mein bhi thoda hame bataye. Aur PM Swanidhi Yojana, jo ki ek bahut hi, jise keh sakte hain, ek flagship scheme jise kehte hain, ye bhi ek bahut bade paimane par logon ko ye labhanvit kar raha hai. Kaise dekhte hain aap isse?
0: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
0: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
0: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
1: जी.
0: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की. ये 4 स्तंभ हैं. जब तक आप इनको फाइनेंशियल पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है. करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके. उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है. कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं. सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं. इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है. फिशरीज़ में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को. उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है. और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं. वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में. ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है. तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है. कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है. और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर. ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं. और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं. उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है. तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है. इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं. विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी.
1: जी,
0: अभी
1: जी.
0: हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं. हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक.
1: जी.
0: वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है. राइट राइट. थैंक यू सो वेरी मच शुभमा एंड अदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक. थैंक यू सो वेरी मच.
0: थैंक यू.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044.
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पतंग फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है, राजेंद्र किशन का लिखा हुआ, चित्रगुप्त की धुन।

ऊंची लोक फिल्म का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

परम शक्ति एवं शौर की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I'm confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में

0: क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
6: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. the headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
8: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
7: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
8: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral highway.
7: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman.
9: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. CEPA is a blueprint of our shared future.
7: Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement.
9: More than 10 consignments are being shipped availing preferential duty access in Oman from different parts of India. Oman is a gateway to the wider Gulf.

0: amicable settlements and cannot exercise judicial powers reserved for competent courts. The last rites of veteran playback singer Suman Kalyanpur were performed with full state honours in Mumbai today. Ms. Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai last night. She was 89. One of India's most celebrated singers, she was a prominent figure in Marathi Bhavgeet and Hindi film music. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla have expressed grief on the demise of the popular singer. Malaysia has become the latest country to impose age-based restrictions on social media use by children. Under the new rules enforced from today, children below 16 years of age are barred from owning social media accounts, with platforms required to implement age verification systems and child safety features. The measures are aimed at protecting children from harmful content, cyberbullying, and addictive online designs. Companies that fail to comply could face penalties of up to 10 million ringgit. So far, Australia, Indonesia and Malaysia have introduced restrictions on social media access for children, while Brazil has mandated stricter parental oversight and age verification measures. Several other countries, including France, Spain, Denmark, Greece, Austria, Germany, the United Kingdom, Norway and Turkey, are also considering similar safeguards for young social media users. The India Meteorological Department or IMD has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. The weather agency has predicted heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds will be experienced in several parts of the country. The IMD has also predicted hot and humid weather conditions over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, and sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. On to sports, 22 Indian rowers have been inducted into the Target Olympic Podium Scheme or TOPS Development Group ahead of the Asian Games to be held in Aichi, Nagoya, Japan later this year. Among those included are Paris Olympian Balraj Panwar, Asian Games silver medalist Arvind Singh and double medalist Jaswinder Singh. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on staying safe during heat waves, precautions, preparedness and protection with Mr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, IMD, and Dr. Rupali Malik, Department of Medicine, Safdarjung Hospital. Listeners can ask questions on the subject on telephone numbers 23717117 and 23314444, prefixing the Delhi STD code. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lai hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टैरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोख देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहिल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ़ ने इतला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरखा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। LPG सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
2: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में ₹42 का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर ₹3,113.50 का हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र

0: मोदी की दूरंदेश कयादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के नजरिए के तहत काबिले जिक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज है, जो कि मुल्क में फलाह बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: मुख्तलिफ जराये के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जाँच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मंसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के दायरे अख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बात कही। अर्जीगुजार का इल्जाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ तावुन को फरोग देने की अहमियत की तौसीख की है, ताकि एक आज़ाद खुले पुरमन मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल कहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरक सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी तआवुन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वज़रा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल اور دفاعی سروسز کی شقوں کے متعلق

0: मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में तआवुन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोकभवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नर R.N. रवि ने वुजरा की काउंसिल में शामिल होने वाले नए अराकीन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी समेत दिगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वुजरा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क़यादत के मुतालिक नुक्ताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में TMC की शिकस्त के बाद अंदरूनी खलफशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम और बच्चों की तहफ़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले मशमूलत, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिज़ाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमलावरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़ रिंगिट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राज़ील ने वालिदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदामात पर अमल शुरू कर दिया है। भारत की सनअती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदाद शुमार और प्रोग्राम पर अमलावरी की वजारत ने बताया कि यह आदाद शुमार सनअती पैदावार के नजरसानी शुदा इशारे IIP सीरीज पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज आंधी की सूरत हाल के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लांग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दायरी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनअती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज़ आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां

0: रखनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048123717117, 2371717, 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते रहे हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताए।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार। जी
0: नमस्कार।
3: मैं श्रीपाद डॉक्टर बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है, जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है चिड़चिड़ापन है बेचैनी लगती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए खासकर ना हाई बीपी वालों ने अपनी?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है COPD एस्थमा ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर वो 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
5: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
4: कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
5: और प्लेन्स के लिए?
4: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
5: एक और श्रोता है हमारे साथ राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
6: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
5: नमस्कार।
4: नमस्कार
6: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
2: जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को उस फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
5: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
2: देखिए लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं, माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
5: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
2: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
0: तो
2: जाता है।
0: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है।
2: फटाफट आप उनको ठंडी जगह तो हल्के कपड़े ढीले कपड़े और गीला करके कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लास

0: क्लासिकल और एग्जर्शनल. तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है. जो एग्जर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है. बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एग्जर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है.
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं. जी महेंद्र जी.
2: जी कनक जी नमस्कार.
1: नमस्ते.
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार.
0: धन्यवाद
2: जी. मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है. ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है. लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है. बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है. कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है. इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं. बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं.
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें. और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें. नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी छाछ बेल का शरबत ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती. नींबू पानी
0: बिल्कुल.
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है, इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए दादा, क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है. क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं. तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट वो कर दे. तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे.
1: और वो भी खतरनाक होता है. धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से. जी धर्मवीर जी.
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ. हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार. मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है. मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं. तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है. और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है. अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है. कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके?
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है. इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक

0: नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने के से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
2: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
0: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है, तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
0: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
0: देखिए, जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं, तो आपको पेरिफेरल वेज़ो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
1: जी,
3: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
3: हाँ दीदी को भी नमस्ते, सर नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी।
3: हाँ, मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू हैं
1: जी,
3: इसका हमारे पर कोई शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
0: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के, एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना

0: गर्म है तो और हम क्या कर सकते हैं, आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए,
1: चलिए
0: उससे थोड़ा सा आपका जो
1: घर का
0: है
1: तापमान थोड़ा ठीक
0: तापमान जो है
1: बनेगा,
0: कंट्रोल रहेगा
1: कंट्रोल
0: बाकी। हाँ जी
1: रहेगा, और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
2: नहीं, आईएमडी जो,
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
2: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते, अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा, हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सएप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया, फेसबुक, आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें तो मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है, वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ के मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
2: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:33 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, दो दो दो 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है, तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे, 10-11 बजे, 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो आपका अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
3: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
3: जी, मैं रवि जवालिया जड़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
3: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन पे दत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता ही है सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
0: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
0: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
0: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है, और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों

0: का फ्लूड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले, और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल जो बहुत, का बच्चा
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसके लिए
0: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा। ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन से गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स से और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स।
3: देखिए जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा फर्क है, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग ये हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी ख्वाहिश हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और शामिल कर रहे हैं पहला पत्र लाबरिया भेरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और बामनिया परिवार के सभी सदस्य। गुल्ला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की पसंद है। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा, तबा खान और सादिक भाई और शाहिद भाई, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई तड़वी, परु मुबारक बारिकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारिकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक तड़वी, परवेज, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। तलाश फिल्म का गीत लता मंगेशकर रफी की आवाज। मजरू ने गीत लिखा है और धुन बनाई एसडी बर्मन ने।

कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की पसंद पर फिल्म सितमगर का गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों ने इसे गाए हैं। मजरू के बोल हैं, आर डी बर्मन की धुन है।

अगले गीत के लिए अनुरोध लिखा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रविन राणा ने। डॉडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम ने। जय गजानन रेडियो श्रोता संघ कापसी रोड अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई, शिवसेना वहात अकोला महाराष्ट्र से कैलाश राव बाकड़े, वंदना बाकड़े और बाकड़े परिवार के सदस्य हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। दिले नादान फिल्म का गीत लता और किशोर की आवाज़, नक्श लालपुरी ने लिखा, खयाम की धुन।

कार्यक्रम में अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहा है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। ये लिखते हैं घंटाघर चौक खंडवा से, कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली, औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद कुमार वर्मा, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ, शैलेंद्र ने लिखा, शंकर जयकिशन की धुन।

कार्यक्रम में अगली पसंद सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली श्वेता सुमित कुमारी ध्वनि गवाणकर परी की, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदिक मीका बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की, दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, कासिम अली, नदीम अली और नईमा बेगम की, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बीपी आरजू जाजोरिया की, झूठी फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, माया गोविंद का लिखा, बप्पी लहरी ने धुन बनाई है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म झूठी के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया ताल बागेश्री। इनके साथ तबला संगतकार हैं लक्ष्मण दत्त दीक्षित। विलंबित गत एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया ताल बागेश्री। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण

0: संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President